听众朋友们，接下来我们播送朱斌唱的一首歌曲，请享受。

听众朋友们，接下来我们播送莫黑扎汗唱的一首歌曲。听众朋友们，请享受。

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

रुदाल ब्लास्टिक यंग दी तुजू कान कर या रियाद ओलिम्पिक चातुर पाडा बाबा कमिला ओलिम्पियाड चातुर क एम्पात पुलू नाम दी समरकंद इंडिया मंगाला हकान बेलांडा देंगान स्कोर तीगा लावानसा तू दी कैटेगरी तरबुका आर पंगा प्रांगानंदा दान दी।

पारा तंगाल संविधान बिला सेप्टेम्बर ओले प्रधानमंत्री इंडिया श्री नरेंद्र मोदी दी न्यू दिल्ली इंडिया दलाम पिदा तुनिया प्रधानमंत्री मोदी मनीरोटी हुगुम्बान हिस्टोरिस यंग मंदलाम अंतरा इंडिया दान आलम सरता मन कान कान बगैमाना क आरिफान बुडाया कुनो सचारा आक्टिव मम बेंदुंग सोलोसी इक्लिम मॉडर्न दान मंग इंस्पिरासी आक्सी कलेक्टिव ग्लोबल बलियाओ मम्बरीकान आस्पिरेसासी कपाडा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अतास क गिगिहान्या दलाम माजुकान मिसी क्रुशियाल इनी संबारी मनियम्पैकान सलामत कपाडा पारा पनियलंगारा बलियाओ मनेगास्कान इंडिया किनी मंगहादिरीकान सोलुसी बागी ततांगान इक्लिम मॉडर्न मंग मनंगापी नारासी ग्लोबल यंग कलिरु मंगेनाई जेजा कार्बन कार्बन प्रधानमंत्री इंडिया मनुजुकान बहवा नगारा नगारा बरकंबंग कपाडा दिसलाहकान सचारा तिडा आदिल पाडाहल नगारा नगारा माजु मंग हासिलकान इमिसी कार्बन पर कपिता हिंगा एनाम कालीलेबी बसार दिबांडिंग कान इंडिया बलियाऊ मंगेनंग कंबाली पलुंचुरान बुकु कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी ऑफ चेंज पाडा चे ओ पे दुआ पुलु सातु सरता बम बेंतुक कान बरबागा इनिशियाटिव सप्रति वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोलार एलियंस एलियंसी सूर्या इंटरनेशनल चे दे एर ई ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस एलियंसी वाहन बाकार हयाती ग्लोबल दान इंटरनेशनल बिग कार्ट एलियंस एलियंसी कुचिंग बसार इंटरनेशनल बलियायु मनेगास कान बाबा लंका लंका इनितला मनेताप कान तोलो तोलोक उकुर बारू बागी उपाय पलिस्तारियन लिंकुंगान दंगान ममादुकान फेलोसफी कुनो दान पलाक्साना आन मॉडर्न प्रधानमंत्री ममा मामा पारकान कमाजवान लुआर ब्यासा यंग दी चापाई दी बरवागा सेक्टर लिंगुंगान सलामा दुआल बेला स्थाहुन तराखिर सरता मनी रोटी बरुबाहन आरा हस्तारगिस यंग मासिफ मनुजु एनर्गी तरबु बारुकान बलियायु मनियाताकान बाबा इंडिया मनमपाती पोजिसी उन्तुक दी गे दुआपुलु करेना तेला ममनुही कमिटमेंट चे ओ पे दुआ लेबी दुआपुलु सातु लेबी अवालदारी जादवाल यंग दी तेतापकान सकालिगुस मनेतापकान स्टैंडर ग्लोबल दालम पंगुना गान एनर्जी नॉन फॉसिल दान कपासिता तनागा सूर्या सबका बुक्ति नियता रिवोल्यूसी एनर्जी सूर्या दी नगारा तरसबुद प्रधानमंत्री ममा पारकान लोंजा कान कपासितास दारी हानिया दुआ गिगावाद दुआ बेलास्ताहुन लालू मंजादी लेबी दारी सरातुस नाम पुलु गिगावाद साथ इनी प्रतंबुहान इनी दिदोरोंग ओले प्रोग्राम पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना यंग तला ममासांग सिस्टम तनागा सूर्या दिले भी दारी लिमा जूता रुमा देंगान बांतुआन क उंगान हिंगा हिंगा दिलापन पुलु रिबु रूपी पर रुमा तांगा बलियाओ मनम्बाह कान बाहवातिगा जूता पेतानी तेला मनिरिमा पंपा तेनागा सूर्या मलालुई प्रोग्राम कुसुम योजना समन्तारा प्रयोग वन नेशन वन ग्रीड यांग तेला रामपुंग बरहासिल मंचेगा इमेसी कार्बन सबानियाक दुआ रातुस जूता तन मनियोरुटी क माजुआन प्रसाद दलाम लांगसाप एनर्गी बरसिस चचारा लुआस प्रधानमंत्री मंगारिस बावाही पनिंगाता आन कपासितास तनागा आंगिन हिंगा तिगा काली लिपात पर लुसा पर लुआसान सिग्निफिकान पंबांकित लिस्त्रिक तनागा आईर सरता फोकस बारू पाडा पंबांकित लिस्त्रिक तनागा नुक्लीर यांकिनी मंबुका पलवांग बागी सक्तोर स्वास्था बलियाओ मंचातात बाबा गाबुंगान उपाया इनितला मन इंकात कान कपासितास एनर्जी नॉन फॉसिल नगारा हिंगा हम्पिर एम्पात काली लिपात संबारी माजुकान टेक्नोलॉजी यांग लेबी बरसी सप्रति गासिफ गास इफिकासी बातू बारा इंडिया जुगा तला मंचपाय तोंगकाक सजारा पेंटिंग दी सेक्टर एनर्जी बरसी लाइनिया उजार श्री मोदी मनंदा एरा बारू मोबिलितास बरसी यांग चांगी प्रधानमंत्री दंगान बांगा मंगुमुमकान पलुंचुरान करेता हिड्रोजन प्रतामा दी नगारा तरसबूत यांग सकालिगुस ममंगांग रिकॉर्ड सबागाई यांग तरपाजांग दी दुनिया

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल हैं। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा

0: कृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें। एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
4: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
3: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
5: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
3: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4th चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: कार्यशाला में

0: प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना हो।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीज

0: चीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इम्बार्क ऑन अ 3-डे विजिट टू गुजरात बिगिनिंग टुडे टू प्रिसाइड ओवर नेशनल फिल्म अवार्ड्स प्रेजेंटेशन सेरेमनी एट एकता नगर इन केवड़िया टुमारो। External Affairs Minister S. Jaishankar to lead Indian delegation at the 81st session of UN General Assembly in New York. US President Donald Trump in deciding mode on Iran war says very big things going to happen soon. US issues security alert for its citizens and staffers in Saudi Arabia amid Houthi attacks. IMD forecasts heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka and Madhya Maharashtra today. And Indian men score emphatic 3-1 victory over Holland at the Chess Olympiad in Samarkand. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevariya tomorrow. We have more from a correspondent.
3: National Film Awards, recognizing achievements in Indian cinema for the year 2024, will be presented by the President tomorrow. Instituted in 1954, the National Film Awards are among the country's highest honors for excellence in cinema. Presented annually by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards recognize creative and technical achievements across feature films, non-feature films and writing on cinema. The winners of the 72nd edition were announced on July 18, 2026 by the chairpersons of the three juries. The awards are divided into three main sections: feature films, non-feature films and best writing on cinema. Along with the Dada Saheb Phalke Award, the highest honor in Indian cinema. Esika Shaw from Akashvani News.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly UNGA in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 26th of this month. During the visit, Dr. Jaishankar will also attend various multilateral and bilateral meetings. We have more from a correspondent.
4: Dr. Jaishankar's visit to New York comes as world leaders prepare to gather at the UN headquarters for the annual high-level general debate, scheduled from September 22 to 28. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all. The General Assembly will bring together presidents, prime ministers and senior representatives from all 193 UN member states who will outline their priorities and positions on major international issues. UN Secretary General Antonio Guterres has called on world leaders to strengthen international cooperation as they gather in New York for the General Assembly. In a video message, Guterres said, "Come together for peace, dignity, justice and humanity. Only with international cooperation we can build a better world." Guterres, attending his final UN General Assembly as Secretary General, with his tenure set

0: पीएम किसान स्कीम। अंडर द स्कीम एलिजिबल फार्मर्स रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 6,000 रुपीज एवरी ईयर इन थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट्स डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट्स। दिस सपोर्ट इज यूजफुल फॉर फार्मर्स टू मीट देयर नीड्स फॉर फर्टिलाइजर्स सीड्स एंड अदर फार्मिंग एक्टिविटीज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट द गवर्नमेंट इज कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग कीपिंग द नीड्स ऑफ फार्मर्स इन माइंड।
1: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
0: द स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2019, सो फॉर मोर देन 4,47,000 करोड़ रुपीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू फार्मर्स थ्रू 23 इंस्टॉलमेंट्स। मोर देन 9,49,00,000 फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम द 23rd इंस्टॉलमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नाउ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द पीएम किसान स्कीम फ्रॉम 2026-27 टू 2030-31। छिंदवाड़ा फार्मर बसंत पटेल सेड दैट फार्मर्स आर हैप्पी विद द डिसीजन टू कंटिन्यू द स्कीम फॉर 5 more years।
2: सरकारी योजना जो है,
3: वी आर वेरी हैप्पी दैट द किसान सम्मान निधि स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 5 more years। द स्कीम इज वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स। इट हेल्प अस इन बाइंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर एंड इज आल्सो यूजफुल ड्यूरिंग द स्विंग सीजन। वी थैंक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट।
2: सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: Women farmers have also benefited from the scheme. The scheme uses digital verification, Aadhaar authentication and direct benefit transfer to send the money directly to farmers. For Akashwani News, I am Vipin Mishra from Bhopal.
4: After the wait of centuries, the construction of the Grand Ram Temple is ushered in a new chapter for Ayodhya, the city of Lord Ram, placing it prominently on the global map of religious tourism and development. With the efforts of the central and state governments, Ayodhya has witnessed new era of development and has once again emerged as a major global center of the Sanatan Dharma. We have a report.
5: The transformation of Ayodhya, the city of Lord Ram, gained momentum after the change of government at the center in 2014 and the formation of the Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh in 2017. While the Supreme Court verdict paved the way for the construction of the Grand Ram Temple, initiatives such as the Deepotsav celebrations has also begun restoring Ayodhya's lost cultural and religious grandeur. Following the consecration of Ram Lala in Ayodhya in the presence of Prime Minister Narendra Modi, the city has increasingly emerged on the global stage as a symbol of religious tourism, Sanatan culture and development. It was from this very city of Lord Ram that Prime Minister Narendra Modi called upon the people to awaken the values of Lord Ram within themselves if India is to become a developed nation by 2047.
6: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
5: मेयर ऑफ अयोध्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गिरीश पति त्रिपाठी सेड दैट फॉलोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल अयोध्या हैज विटनेस्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक एरियाज इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन।
7: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है, अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
5: Today, Ayodhya is not merely a center of faith, but is also setting new benchmarks in religious tourism, connectivity, and employment opportunities. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
4: This is Akashwani giving you the news.
8: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
4: U.S. President Donald Trump has said that he is in deciding mode over the Iran war, warning that big things are going to happen. His remarks came after Tehran said it has shared its conditions with Washington through mediators for reopening the Strait of Hormuz. Trump's comments come ahead of Iranian President Masoud Pezeshkian's expected visit to New York to attend the United Nations General Assembly. A senior delegation is likely to accompany him. Trump told a TV channel that very big things are going to be happening in the not-so-distant future if the Iranian regime does not behave. He reportedly discussed 3 possible options for the war: wiping Iran out, letting them rot economically, or making a deal.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात का 3 रोजा दौरा करेंगी। वो कल एकता नगर में कौमी फिल्म अवार्ड अता किए जाने की तकरीब की सदारत करेंगी। वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग पर फैसला कुन रुझान, उन्होंने कहा कि जल्द ही बहुत बड़े वाकयात होने वाले हैं। अमरीका ने हौसी हमलों के दौरान सऊदी अरब में अपने शहरियों और अमले के लोगों के लिए हिफाजत से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय मर्दों ने हॉलैंड पर 3-1 से जबरदस्त जीत हासिल की। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 रोजा दौरे का आगाज कर रही हैं। वो कल एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड की तकरीब की सदारत करेंगी। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: सदर जमहूरिया साल 2024 के भारतीय सिनेमा में हुसूलियाबियों को तस्लीम करते हुए कल कौमी फिल्म अवार्ड अता करेंगी। इन अवार्ड्स का सिलसिला 1954 में शुरू किया गया था, जो सिनेमा में महारत पर मुल्क के आला तरीन एजाजात में शुमार होते हैं। ये अवार्ड्स हर साल इत्तलात और नशरियात की वजारत की तरफ से फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म पर दिए जाते हैं। इन जुमरों में सिनेमा के बारे में लिखने का अवार्ड भी शामिल है। इन अवार्ड्स के तहत सिनेमा में तख्लीकी और तकनीकी हुसूलियाबियों का एतराफ किया जाता है। इन 72वें अवार्ड्स हासिल करने वालों के नामों का ऐलान 3 ज्यूरीज के सदर नशीनों ने 18 जुलाई 2026 को किया था। इनके साथ साथ दादा साहब फाल्के अवार्ड्स भी अता किया जाता है, जो भारतीय सिनेमा का आला तरीन एजाज है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को इस इजलास से खिताब करेंगे। वो अपने दौरे में मुख्तलिफ कसीर मुल्की और दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क का दौरा ऐसे वक्त कर रहे हैं जब आलमी रहनुमा 22 से 28 सितंबर तक मुनाकिद होने वाले आला सतह के सालाना जनरल बहस मुबाहसे के लिए अक्वाम मुत्तहदा के सदर दफ्तर में यकजा होने की तैयारी कर रहे हैं। अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली का ये 81वां इजलास एतमाद की बहाली यकसर तब्दीली का बंदोबस्त एक अक्वाम मुत्तहदा जो सबको खिदमात फराहम करती है के मौजू पर मुनाकिद किया जा रहा है। इस जनरल असम्बली में अक्वाम मुत्तहदा के सभी 193 रुकन ममालिक के सुदूर वज़राए आज़म और सीनियर नुमाइंदगान यकजा होंगे और बड़े बैन अक्वामी मामलात पर अपनी तरजीहात और मौकिफ तय करेंगे। अक्वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने आलमी रहनुमाओं से कहा है कि वो बैन अक्वामी ताउन को मजबूत करें, जैसा कि वो जनरल असम्बली के लिए न्यूयॉर्क में यकजा हो रहे हैं। अक्वाम मुत्तहदा के मुताबिक 81वें इजलास में आलमी ताउन में नई जान पैदा करने, लगातार तरक्की के मकासद को आगे बढ़ाने और अमन वक़ार और बराबरी के लिए इज्तिमाई इकदाम को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर आजम ने मोदी के अपने ओहदे की खिदमात अंजाम देते हुए 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उनका सफर जन सेवा से देश सेवा के उसूल और अवामी खिदमत के तई उनके लगातार अज़्म पर मबनी है।

0: हुकूमत जो खिदमात और अच्छी हुक्मरानी के तसव्वुर से मुतहर्रिक है, 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के मकसद के तईं काम कर रही है। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी इख्तियारात के जरिए इस अज़्म से लोगों की जिंदगियों में यकसर तब्दीली आ रही है। इस ज़िम्न में हम पीएम किसान के बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
1: मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी तादाद में पीएम किसान स्कीम से फायदा पहुंच रहा है। अहल किसान हर साल 3 बराबर की किस्तों में 6,000 रुपए की माली मदद हासिल कर रहे हैं। ये रकम इन्हें बराह रास्त बैंक खातों में मिल रही है। ये मदद किसानों के लिए काफी फायदेमंद है कि वो कीमियावी खादों, बीजों और दीगर जरई कामों को पूरा कर सकें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत किसानों की जरूरतों के पेश नजर लगातार काम कर रही है।
2: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
1: इस स्कीम का आगाज 2019 में किया गया था और अभी तक 4,47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 24 किस्तों में किसानों को जा चुकी है। 23वीं किस्त से 9,49,00,000 किसानों को फायदा पहुंचा है। मरकजी हुकूमत ने अब पीएम किसान स्कीम को 2026-27 से 2030 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस स्कीम के लिए 3,15,000 करोड़ रुपए की माली मदद मुख्तस की गई है। छिंदवाड़ा के एक किसान बसंत पटेल ने बताया कि किसान मजीद 5 साल के लिए इस स्कीम को जारी रखने के फैसले से काफी खुश हैं।
3: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
1: खातून किसानों को भी इस स्कीम से फायदा पहुंच रहा है। अभी तक 1,06,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खातून किसानों को दी जा चुकी है। इस स्कीम में डिजिटल तस्दीक, आधार तस्दीक और बराह रास्त फायदा मुंतकली का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रकम को बराह रास्त किसानों तक पहुंचाया जा सके। भोपाल से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: सदियों के इंतजार के बाद अजीमुशान राम मंदिर की तामीर से अयोध्या के एक नए बाब का आगाज हुआ, जो भगवान राम का शहर है और जिसकी वजह से मजहबी सियाहत और तरक्की के आलमी नक्शे में ये शहर इम्तियाजी हैसियत का हामिल हो गया है। मरकजी और रियासती सरकारों की कोशिशों से अयोध्या में तरक्की के एक नए दौर का आगाज हुआ और ये शहर सनातन धर्म का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा। तफसील हमारे नामनिगार से।
4: साल 2014 में मरकज में हुकूमत की तब्दीली और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत के कायम होने के बाद से भगवान राम की नगरी अयोध्या की तस्वीर बदलने का अमल तेज हुआ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शानदार राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार हुआ, तो दूसरी तरफ दीपोत्सव जैसे प्रोग्रामों के जरिए अयोध्या के सकाफती और मजहबी शानो शौकत को नई पहचान देने की कोशिश शुरू हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये शहर आलमी सतह पर मजहबी सयाहत, सनातन संस्कृति और तरक्की की अहम अलामत के तौर पर उभरा है। इसी राम की नगरी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इसके लिए हमें अपने अंदर भगवान राम के उसूलों को बेदार करना होगा।
5: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
4: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि राम मंदिर की तामीर के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक अयोध्या में सकाफती, समाजी और माशी मैदान में बड़ी तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि सैलानियों की तादाद में इजाफे के साथ साथ राम नगरी को आधुनिक सहूलियात से भी लैस किया गया है।
6: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना, अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, हर तरफ युगांतरकारी परिवर्तन हुए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
4: आज अयोध्या सिर्फ अकीदत का मरकज नहीं बल्कि मजहबी सयाहत, बेहतर राबते और रोजगार के मौकों के जरिए तरक्की की नई राहें भी हमवार कर रही है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान जंग के सिलसिले में फैसला कुन मरहले में हैं। उन्होंने खबरदार किया कि बड़े वाकयात पेश आने वाले हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान ने कहा कि उसने आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के लिए अमरीका के सामने अपनी शरायत सालिसी करने वालों के जरिए पेश कर दी हैं।

0: रात का तीन रोजा दौरा करेंगे। वो कल एकता नगर में कौमी फिल्म अवार्ड अता किए जाने की तकरीब की सदारत करेंगे। वजीर खाजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क़यादत करेंगे। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग पर फैसला कुन रुझान, उन्होंने कहा कि जल्द ही बहुत बड़े वाकयात होने वाले हैं। अमरीका ने हौसी हमलों के दौरान सऊदी अरब में अपने शहरियों और अमले के लोगों के लिए हिफाजत से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय मर्दों ने हॉलैंड पर 3-1 से जबरदस्त जीत हासिल की। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत स्वर गंगा में कार्यक्रम नीता सूरमा का गायन ठुमरी दादरा, राग है मिश्र भैरवी। तो लीजिए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में ये।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत स्वर गंगा के कार्यक्रम में नीता सूरमा के गाए ठुमरी दादरा। राग थी मिश्र भैरवी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: फ्रेंड्स सर्कल, और आर यू रिक्रूटिंग पीपल ऑल्सो?
1: सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अटैच टू इट. आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब प्रायर टू स्टार्टिंग माई ओन स्टार्टअप. आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन समबडी हु वॉन्टेड टू डू दिस एज वेल, बट दे डिड नॉट हैव अ कॉन्क्रीट आइडिया ऑफ वॉट कुड बी डन एंड आई जॉइंड विद देम. दे केम फ्रॉम कैनेडा एंड दे स्टार्टेड टू लिव इन बिजनौर देन होम टाउन बिकॉज दे वर वेरी इफेक्टेड बाय हाउ

मैं नोम ये तरह ये फिल्म हिंदी बेहमजो बेपान मेरे साथ वतवरमाई बे अखबार जहान गुविंदे नईमुद्दीन कुरेशी डबी रिकुल्ले साजमान मिलाल आंतिनो गोत्रीस बर रहबरा ने जवानी तौकीद वारिद अब दिया के बरा ये ईजाद सुल अदालत

يد الله فوق أيديكم.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार

0: बार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने लोगों से खुद दवाएं न लेने और डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अचानक किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगनानासंबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने 252.4 अंक के साथ रजत और रुद्रांश पाटिल ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल ने 2रा स्थान प्राप्त किया जबकि चीन ने स्वर्ण पदक जीता। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुन टो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today said India's journey in pharmacovigilance has been a remarkable example of self-reliance over the years. She said this while releasing the 7th edition of National Formulary of India in New Delhi. The minister said currently more than 1,100 adverse drug reaction monitoring centres are operational in the country and the government aims to increase this number up to the primary health facility level. She informed that the country now provides pharmacovigilance data to the WHO patient safety database. The minister further highlighted that India has risen from the 123rd

घर आंगन। लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। आज के अंक में आपके साथ हूं मैं, यानी आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और जुड़े रहिए मेरे साथ एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी कि 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। और दोस्तों, साथ ही हमें आप ईमेल भी करते रहिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो आइए कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से शेर के साथ कि दिखाएगी असर दिल की पुकार आहिस्ता आहिस्ता, दिखाएगी असर दिल की पुकार आहिस्ता आहिस्ता, बजेंगे आपके दिल के भितार आहिस्ता आहिस्ता। तो दिल के तार ज़रूर बजेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बजा रही हूँ ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी ये खूबसूरत सा गीत आप फिल्म रफू चक्कर से सुन रहे थे, और जिसे गाया शैलेंद्र सिंह और कंचन ने। और आज है 21 सितंबर, यानी कि एक ऐसा दिन जो हमें शांति, संवेदना और इंसानियत की याद दिलाता है। जी हाँ श्रोताओं, आज विश्व शांति दिवस है। शांति सिर्फ युद्ध न होने का नाम नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में भी शांति हो, बातचीत में सम्मान हो और मतभेदों में भी हमारे भीतर इंसानियत बनी रहे। और इसके साथ ही आज एक और दिवस भी है जिसे हम जानते हैं विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में। अल्जाइमर हमें ये समझाता है कि जब किसी की यादें कमज़ोर पड़ने लगे, तब हमें उनकी याददाश्त नहीं, उनका हाथ थामना है। धैर्य और अपनापन ऐसे समय में बहुत बड़ी ताकत बनते हैं। और आज ही तिथि के अनुसार श्री नारायण गुरु का समाधि दिवस भी है। उन्होंने समाज को समानता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि इंसान की जो पहचान होती है उसकी जाति धर्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और इंसानियत से होनी चाहिए। आज के इन तीनों अवसरों का संदेश कहीं ना कहीं एक ही है कि दिलों में शांति, रिश्तों में संवेदना और समाज में समानता, यही एक बेहतर दुनिया की शुरुआत हो सकते हैं। और देखिए ना, इसी बात पे किसी ने एक बड़ा प्यारा सा शेर कहा है कि सात संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे क्रांति फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। श्रोताओं, आज है एक और खास दिन, यानी कि विश्व आभार दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि आभार जताने से सिर्फ रिश्ते नहीं, जिंदगी भी आसान हो जाती है। कभी किसी ने आपकी मदद की हो, आपका हौसला बढ़ाया हो, या मुश्किल वक्त में बस आपका हाथ थामा हो, तो आज उसे दिल से कहिए धन्यवाद। आभार के लिए बड़े मौकों का इंतजार मत कीजिए। सुबह की चाय, परिवार का साथ, दोस्त की मुस्कान, सेहत, काम और जीवन की छोटी छोटी जो खुशियां हैं, इन सब के लिए शुक्रगुजार होना सीखिए। क्योंकि जब हम शिकायतों से ध्यान हटाकर आभार पर लगाते हैं, तो तनाव भी कम होता है और रिश्तों में मिठास भी बढ़ती है। साथ ही हमारा जो मन है ना, वो भी बहुत हल्का हल्का सा महसूस करता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प लें, हर दिन कम से कम 3 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करेंगे। याद रखिए, आभार कोई औपचारिकता नहीं, जीवन को आसान और खुशहाल बनाने की आदत है। और देखिए ना, कितना प्यारा सा एक शेर है इसी भाव पर कि जो खुशियों की वजह दे दे तो उसका शुक्रिया करना, कोई दिल में जगह दे दे तो उसका शुक्रिया करना। और आज के इस विशेष अवसर पर आपके लिए एक खास गीत।

0: हुजूर आप आए कदम चूम लूं या के आंखें बिछा।
1: श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोंसले ने। और आइए अब बात करते हैं जापान के आइची नागोया में 19 सितंबर से शुरू हुए 20वें एशियन गेम्स की, जो 4 अक्टूबर तक चलेंगे, जहां एशिया के खिलाड़ी 43 खेलों में पदकों के लिए मुकाबला कर रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि एशियन गेम्स के शुरुआती दौर में ही भारतीय महिलाओं ने बता दिया है कि मुकाबला जज्बे से कैसे जीता जाता है। तो शुरुआत करते हैं शूटिंग से, जिसमें एलावेनिल वलारीवान ने कमाल करते हुए 10 मीटर एयर राइफल की टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता और फिर व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक उन्होंने अपने नाम किया। टीम में उनके साथ सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद भी थी, यानी भारत के शुरुआती दोनों पदक महिलाओं ने दिलाए। वहीं सुचिका तारियाल ने महिलाओं की 60 किलो ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वे इस वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। और साथ ही आपको बताते हैं कि क्रिकेट में भी शेफाली वर्मा के शानदार शतक की बदौलत भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को हराया है और फाइनल में जगह बना ली है और एक और पदक सुनिश्चित है। साथ ही हॉकी की बात करते हैं तो भारतीय महिला टीम ने शानदार शुरुआत करी है, यानी कि जो एशियन गेम्स हैं वो अभी शुरू ही हुए हैं, लेकिन जो भारतीय बेटियाँ हैं ना, उन्होंने भाई अपने जो इरादे हैं वो साफ कर दिए हैं कि मैदान कोई भी हो, भारतीय बेटियां अनाड़ी नहीं बल्कि असली खिलाड़ी हैं। तो आइए इसी बात पे आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत सीता और गीता फिल्म से, जिसे गाया है आशा भोसले और मन्ना डे ने।

दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता था कि भाई पढ़ाई के लिए किताब चाहिए होती थी तो लाइब्रेरी तक जाना पड़ता था, लेकिन आज किताबों की एक बड़ी दुनिया आपके मोबाइल और कंप्यूटर पर मौजूद है। जी हाँ, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ अलग अलग विषयों की किताबें, अध्ययन सामग्री, शोध सामग्री और शैक्षणिक संसाधन एक जगह पर मिल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पढ़ाई के लिए हर बार महंगी किताबें खरीदना या दूर की लाइब्रेरी जाना जरूरी नहीं। विद्यार्थी अपनी जरूरत और रुचि के अनुसार सामग्री खोज सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से जुड़ना जो है वो बहुत आसान है। आपको करना क्या है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर नाउ से अपना अकाउंट आपको बना लेना है। नाम, ईमेल, पासवर्ड और जो आपकी शैक्षणिक जानकारी जैसी सामान्य जानकारी होती है वो भरनी होती है। और इसको जब आप भरेंगे फॉर्म को, तो भाई आपको बता दें कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो बिल्कुल मुफ्त है, यानी कि निःशुल्क है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि NDLI की बहुत सी सामग्री बिना रजिस्ट्रेशन के भी देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ व्यक्तिगत सुविधाएँ और कुछ लाइसेंस प्राप्त सामग्री जो है उसका अतिरिक्त एक्सेस मिल सकता है। तो इससे जो है आपकी अतिरिक्त हेल्प भी हो जाएगी। तो भाई छात्रों से तो यही कहना है कि वो इससे ज़रूर जुड़े, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है। तो चलिए भाई, अब हम भी अपना कदम बढ़ाते हैं राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ और खुशी खुशी चलते हैं।

श्रोताओं, अभी आप प्यारा सा गीत जो सुन रहे थे, पड़ोसन फिल्म से सुन रहे थे, और इसे गाया था लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। और आइए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सेहत की। हम अक्सर सोचते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और ये बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ये बहुत आसान है, यकीन मानिए। और इसकी शुरुआत हमारी थाली से ही हो सकती है, यानी कि सही खान पान से हम खुद में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सही खान पान का मतलब महंगे या मुश्किल डाइट प्लान बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रोज़ के खाने में थोड़ा सा संतुलन ही तो लाना है। थाली में आपको दाल, हरी सब्जियाँ, और जैसे दूध है और दूध से बने उत्पाद हैं, पनीर है, मौसमी फल, साबुत अनाज, और पर्याप्त पानी को जगह देनी है। और साथ ही बहुत ज़्यादा तला भुना मीठा और पैकेट वाला खाना जो है वो आपको कम करना है, या फिर नहीं ही खाइए। और इसका जो असर है वो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि हमारे मूड और एनर्जी पर भी पड़ता है। तो पेट जब हल्का होता है तो काम में भी मन लगता है, और दिन भर सुस्ती भी कम महसूस होती है। और एक अच्छी बात पता है क्या, इसके लिए किसी खास दिन का इंतज़ार नहीं करना, आज की ही जो आपकी अगली थाली है ना, उससे ही शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि स्वस्थ जीवन की जो शुरुआत है वो किसी दवा की दुकान से नहीं बल्कि हमारी रसोई और हमारी थाली से ही होती है। सही खान पान, स्वस्थ तन और सुंदर शरीर, इनका बहुत गहरा संबंध है। और यकीन मानिए, जब इनका संतुलन होता है ना, तो आपकी जो ज़िंदगी है ना, उसका सफ़र बड़ा ही सुहाना लगता है।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे अंदाज फिल्म से, और ख़ास अंदाज में सुना रहे थे आपको ये गीत किशोर कुमार जी। तो आइए अब बात करते हैं कुछ शादी ब्याह की, कि भाई देखिए शादी का सीज़न जो है धीरे धीरे आएगा, तो शादी के लिए कई बार जो है वो रिश्ता आता है और परिवार को भी पसंद आ जाता है। लेकिन क्या सिर्फ रिश्ता पसंद आ जाना ही काफ़ी है? जिस व्यक्ति के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है उससे कुछ सवाल पूछने भी तो ज़रूरी होते हैं। तो भाई सवाल ऐसे हों कि सामने वाले से जब आप पूछें तो आपकी उसके साथ जो जीवन की यात्रा तय करनी है उससे संबंधित सवाल हों। तो आप शादी के बाद कहाँ और किस तरह रहना चाहते हैं, नौकरी या करियर को लेकर आपकी क्या सोच है, घर के काम और जिम्मेदारियां आप कैसे बांटेंगे, पैसों को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं और बच्चों को लेकर आपकी क्या राय है, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछने बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि भाई मतभेद होने पर आप बातचीत कैसे करते हैं। इन सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं बल्कि बातचीत से समझिए, क्योंकि अरेंज मैरिज में परिवार रिश्ता ढूंढ सकता है लेकिन एक दूसरे को समझने और जीवन साथ बिताने का जो फैसला होता है वो आखिरकार दो लोगों का ही होता है। इसलिए भी शादी से पहले सवाल पूछना

बहुत ज़रूरी है। तो झिझकिए बिल्कुल भी नहीं, सही सवाल ही रिश्ते की शुरुआत को मजबूती देता है। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि भाई आजकल की जो दुनिया है वहाँ पर जो रिश्ते हैं वो मैट्रिमोनियल साइट से कई बार जुड़ जाते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सही सही जानकारी आपको हो, तो जो बच्चे हैं यानी भावी जो कपल होने वाले हैं, दंपति होने वाले हैं, उनके जो माता पिता हैं उनको भी आपस में मुलाकात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और अच्छी तरह से एक दूसरे को जानना समझना चाहिए, जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। और उसके साथ ही जो लड़का और लड़की हैं भाई उनके लिए भी यही नियम है, उनको भी भले ही वो किसी मैट्रिमोनियल साइट से मिले हैं लेकिन उनको आपस में मिलकर और विभिन्न विषयों पर बातचीत करनी चाहिए कि जीवन को किस तरह से बिताना है और अच्छी तरह से पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आप इस इन सब कामों के लिए भाई कभी चाय पर भी मिल सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आऊंगा।
1: श्रोताओं, अभी आप ये प्यारा सा जो गीत है सुन रहे थे सौतन फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब ने। और देखिए, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उन्होंने ईमेल किया है। नवीन भाटिया जी ने कार्यक्रम वो सुन रहे हैं और उन्होंने हमारे कार्यक्रम की तारीफ भी की है। साथ ही सुदर्शन मुखी जी जो हैं, उनका भी ईमेल आया है तो, और उन्होंने पूरे घर आंगन परिवार को विश्व शांति दिवस की हार्दिक बधाई भी दी है। और उन्होंने लिखा है कि कोई कुछ भी बोले, हमेशा शांत रहो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर को सुखा नहीं सकती। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा आपने जो विचार है वो दिया है। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई सुदर्शन मुखी जी ने एक वाक्य, एक जो कविता जैसी जो पंक्ति है वो हमें भेजी है, तो मेरे मन में भी कुछ भाव आ रहे हैं। तो मैं बस कुछ पंक्तियाँ कहती हूँ कि वो सिर्फ घर की चौखट नहीं, वो घर की बुनियाद है। वो सिर्फ घर की चौखट नहीं, वो घर की बुनियाद है। कभी बेटी बनकर हंसती है, कभी माँ की आवाज़ है। उसके सपनों का भी आसमान है, उसकी अपनी भी कोई उड़ान है। वो रिश्ते निभाना जानती है लेकिन, वो रिश्ते निभाना जानती है लेकिन, उसकी अपनी भी कुछ तो पहचान है, उसकी अपनी कुछ तो पहचान है।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं सोनाली और साधना सरगम की आवाज़ में, फिल्म का नाम खून भरी मांग। और इसी गीत के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो सखी कल्पना को आज के घर आंगन कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये जानकारी देने की सूची में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की

तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नवीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है। सॉलिसिटर जनरल ने प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ के पुनर्गठन का भी अनुरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबे खाड़ी पहुंचे। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालनगत तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुनटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

में एक परदेसी आता है और आते जाते जाते दिल के साथ एक मीठा सा गम भी छोड़ जाता है। समझ गए ना मैं कौन सी गीत की बात कर रही हूँ? नहीं समझे तो बस इस गाने को सुनिए और फिर मुझे बताइए क्या ये रंग जो है, क्या इस फागुन का रंग आपके भी दिल पर कहीं बरसा, या उसने एक रंग आपके यादों में नया घोला? तो प्लीज बताइए, आपके साथ हम इस फिल्म का पूरा सफर तय करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाने से।

जी, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म फागुन का ये गीत। और देखिए, दिल तो आप हमारा ले जाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी आपकी मेल्स हमें आनी शुरू हो चुकी हैं, तो अब हम क्या ही बताएं। तो देखिए, ऐसा है कि उन सभी मेलों को हम इसका शुमार करेंगे, शामिल करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। लेकिन अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करते हैं, हल्का सा आपको पीछे लेके चलती हूँ उस दौर में जब 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो इस फिल्म में पुनर्जन्म की कहानी थी। शुरुआत होती

है इस फिल्म की बीजन और बनानी। जी हाँ, ये है इस फिल्म के हीरो हीरोइन का नाम। जो हीरो है वो एक जमींदार परिवार का बेटा है और जो हीरोइन है वो एक नर्तकी है। दोनों के बीच प्रेम होता है, लेकिन परिवार और सामाजिक फासले इस रिश्ते के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। मोहब्बत अधूरी रह जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अधूरी प्रेम कहानी पुनर्जन्म के साथ फिर लौटती है, जैसे कोई रिश्ता वक्त से कह रहा हो कि अभी उसकी कहानी बाकी है। और अब उसी प्रेम की बेचैनी को आवाज़ देती एक नगमा है यहाँ पर, एक आवाज़ है, आवाज़ है आशा भोसले की। और ये जो नगमा है इसे आप सुनिए और फिर मुझे बताइए कि इस गाने का या इस फिल्म का आपके जीवन में कभी कोई असर पड़ा है। तो आपकी ईमेल्स का हम बकायदा यहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आइए सुनते हैं फिल्म का एक और गीत।

इतनी खूबसूरत अगर फरियाद कोई करे, इस तरह से कोई बुलाए, तो खैर कोई कहाँ रह सकता है। तो हम बात कर रहे हैं 1958 में रिलीज हुई फिल्म फागुन की, जिसमें मधुबाला के साथ है भारत भूषण और हमारे साथ हैं आप सभी। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ हमारे दोस्तों की, हमारे श्रोताओं की। तो हम देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन है। देखिए, हमारे साथ अभी जुड़े हैं प्रकाश वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से, और इनके साथ हैं प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा। फिर हमारे साथ हैं नोहर जिला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार, हिमांशु सुधार। और फिर हमारे साथ जुड़े हैं फारूक अली खान,

और इनके साथ हैं इनकी सभी दोस्त। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, आपके परिवार के सदस्यों का भी स्वागत है। फिर ये हैं धर्मेंद्र छिपा जी, और ये लिख रहे हैं आज की फिल्म है फागुन। आप चर्चा कर रहे हैं अपनी दौर की बेहतरीन फिल्म फागुन की। जी हाँ, निर्माता निर्देशक विभूति मित्रा और इस फिल्म के अभिनय, जैसे हमने आपको बताया कि मधुबाला और भारत भूषण के साथ हैं जीवन, महमूद, कुकुमुराद और

कि हमारा सारा काम वो और आसान कर देते हैं जब हम आपको आगे बताने वाले होते हैं। वो सारी बातें हमारी इस मेल के जरिए वो आपको पहले ही बता देते हैं। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र चीपा जी। तो हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार भी हैं इनके साथ। फिर हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ जुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। शुक्रिया। सुदर्शन मुखी जी जुड़े हैं अनिता मुखी, सिमरन मुखी के साथ शांति नगर सोनीपत से। इन्हें अच्छा लग रहा है कार्यक्रम सुन के, अच्छा लगा, धन्यवाद। देखिए हमारे साथ हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। अब देखिए, इस फिल्म में कुल जमा 7 से 8 गाने हैं। पूरी कोशिश रहेगी आपको हम सारे गाने सुनाएं। अब दूसरे गाने के पहले आपको ज़रूर बता दूं इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। जैसे ना, फिल्म की एक ख़ास बात शायद आप भी जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे उनको चौंका दे कि मधुबाला ने इस फिल्म में 3 भूमिकाएँ निभाई जबकि भारत भूषण ने 2 भूमिकाएँ। यानी एक ही फिल्म में दोनों कलाकारों को अपने किरदारों के अलग अलग रूप और भाव जीने का मौका मिला। मधुबाला के लिए ये उनके अभिनय के अलग रंग दिखाने का एक बहुत बेहतरीन अवसर था। तो अब हम आपको इस फिल्म में मधुबाला पर फिल्माया एक बहुत ही चंचल सा गाना जरूर यहाँ पे सुनाना चाहेंगे। तो आइए सुनते हैं फिल्म फागुन का ये एक और गीत।

तो प्यारी सी चंचल सी चुलबुली खूबसूरत दीवा मधुबाला आपकी नज़र के सामने आ गई ना। तो हम बात कर रहे हैं फिल्म फागुन की, और आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफ़र सोनाली। देखिए, इस फिल्म की हम बात करते हैं तो इसका जो संगीत है वो ओपी नैयर का है, और इसका संगीत है उसमें एक अलग ही लय है और एक बहुत अलग सी चंचलता भी है। और फागुन में प्रेम कभी बहुत मासूम है तो कभी शरारती है, और कभी रूठने मनाने वाला भी है। और प्रेम में रूठना भी हो तो अपने आप में वो एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है ना। तो बस शर्त इतनी होती है कि अगर आप प्यार में रूठ रहे हो तो कोई आपको मनाने वाला भी हो। तो आप समझ गए होंगे मैं अब फागुन की कौन से गीत की बात कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं फागुन फिल्म का एक और गीत।

रूठनी मनानी और प्यार में दर्द का ये जो नगमा था, ये फिल्म फागुन का है जो हमारी आज की फिल्म है। और अब हम बात करते हैं हमारे दोस्तों की, तो हमारे साथ जुड़ी हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। हमारे साथ हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से। फिर है हमारे साथ वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और है हमारे साथ हैं जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, तिशानी और निमित आहूजा। फिर हमारे साथ अजीत भावसार जी हैं, इन्होंने खूब सारी जानकारी हमें दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ हैं वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार के साथ हैं प्रेमिला भावसार, धन्यवाद। फिर हमारे साथ हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता और क्षिप्रा गुप्ता। फिर हमारे साथ कौन है जी, ये है हरगांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। शुक्रिया बने रहने के लिए। पूनम गंगनेजा जी, आपका नाम ले चुकी हूँ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर हमारे साथ कौन है ये, जी हाँ ये है बसंत कुमार सिन्हा जी का मेल है ये, इनके साथ है रेखा देवी, अजय, रिमी, बॉबी, अनविका, तनुश्री, बीके सिन्हा, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से। और ये है वसंत लाल सौ, हीरा मोती, पन्ना लाल सौ, इनका भी मेल है, शुक्रिया। फिर है हीरामणि वर्मा, दतरंगी, भाटापारा से। और देखिए हम बात करते हैं आप लोगों की, मेल्स और भी लूँगी, इसके पहले एक गाना और आपके समक्ष रख रही हूँ। तो ये जो गाना है इसके बारे में आपसे बात कर रही हैं, इस फिल्म का संगीत जो है वो ओपी नैयर और गीतकार हैं कमर जलालाबादी। इस जोड़ी ने फागुन के लिए कई लोकप्रिय गीत दिए, इसकी धुनों में लोक और शास्त्रीय रंगों की छाप भी सुनाई देती है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि शास्त्रीय रंगों की जो छाप है ना, उसमें कई जो गीत हैं उनमें जिस राग का प्रयोग हुआ है वो है राग पीलू। और यह संगीत जो है फिल्म की कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाता बल्कि उसे यादगार भी बनाता है। तो मतलब संगीत जो है वो इसकी कहानी से गुथा हुआ है। और तो बस चलिए एक और गाना आपको सुनाते हैं। ये आवाज़ इसमें फिर मुख्य स्वर है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, जो इस फिल्म के संगीत में भी इन्हीं दोनों की आवाज़ें भी थीं।

साथियों देखिए, घड़ी बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रही है कि आपको आगे और इस फिल्म के गाने दो और सुना पाऊँ, लेकिन आपको बता दूँ हमारे साथ जो दोस्त हैं वो हैं, ये हैं डीबी राणा जी, ये हैं हमारे साथ नेहरू विहार दिल्ली से, और फिर हमारे साथ जुड़े हैं नाह

पीवी नाहव पी एस नाहवकर निर्मला नाहवकर विशाल नाहवकर सोपान तायरी ये हमारे संग नदलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से जुड़े हैं। फिर है हमारे साथ संजय ढींगिया नमन ढींगिया अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से। फिर हमारे साथ जुड़े हैं जगर राम साहू माफ़ कीजिएगा और ये हैं ग्रामनगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। इनके साथ हैं बबलू साहू जामुन देवी साहू राजू लल्ला पूजा प्रांजल समीक्षा बेबी आराध्या साहू प्रकाश वर्मा प्रिंस वर्मा यशस्वी वर्मा। आपकी मेल हम ले चुके हैं पहले भी। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आपको इस फिल्म के बाकी जो दो गाने हैं उनकी हल्की हल्की झलक भी सुनवा के जरूर जाएंगे।

दोस्तों ये थी 1958 में रिलीज हुई फिल्म फागुन, और आज हमने सफर ये तय किया इसी फिल्म का, हमारी आज की ये फिल्म थी, और हम किसी और दिन किसी और मौसम का कोई और रंग लेकर आपके साथ जरूर हाजिर होंगे। अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं.
1: विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया.
2: मुख्यमंत्री ने नागरिकों को अपील की थी कि वो डॉक्टरों वालों दसी गई दवाई ही लैन, खुद दवाई लैन तो गुरेज कर. उन्होंने कहा कि किसी दवाई के माड़े प्रभाव न कदे भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सैशन दौरान उच्च पदरी बैठक दौरान भारतीय वफद की अगुवाई करेंगे. डॉ जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को महासभा के उच्च पदरी सैशन को संबोधन करेंगे. वो इस दौरे दौरान कई बहुपक्षी और दवलिया मीटिंगा भी करेंगे. 22 सितंबर तो 28 सितंबर तक होने वाली सालाना उच्च पदरी मीटिंग लिए दुनिया के चोटी के नेता संयुक्त राष्ट्र सदर मुकाम पहुंच रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र के सारे 193 मैंबर देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीनियर प्रतिनिधि महासभा में हिस्सा लेंगे. वो मुख्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की तरजीहां और स्टैंड सामने रखेंगे. संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल एंटोनियो गुतरेस ने विश्व नेतावां नूं अंतरराष्ट्रीय सहयोग नूं मजबूत करने का सद्दा दिता है. दिल्ली हाई कोर्ट में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को जजों वजों सहुं चुकाई गई. इस नाल हाई कोर्ट में जजों की कुल गिनती 50 हो गई है. चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय ने जस्टिस निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत प्राशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अहुदे की सहुं चुकाई. केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश तो बाद 19 सितंबर को इन सत्तों की नियुक्ति का ऐलान किया. केन्द्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बठिंडा के तलवंडी साबो तो नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे गेड़ की शुरुआत की. उन्हां तख्त श्री दमदमा साहब विखे मत्था टेकया. इस मौके बीजेपी के पंजाब प्रधान केवल सिंह ढिल्लों, पंजाब इंचार्ज सतीश पूनिया, एचएस फूलका, तरुण चुग, सुनील जाखड़ भी उन्होंने नाल मौजूद रहे. इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन करदे श्री चौहान ने नशे नूं ठाल पाउण लई लोकां नूं यात्रावां दा हिस्सा बनाउण दा सद्दा दित्ता.
3: भारतीय जनता पार्टी नशे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करके समाप्त कर देगी, ये हमारा संकल्प. हम नशे की जड़ पर चोट करेंगे, हम उस चैनल को ध्वस्त करेंगे. ड्रग माफिया कौन है, और वो भी सावधान हो जाए, उनको छोड़ा नहीं जाएगा. वो तो जाएंगे ही, लेकिन उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा. हम नशे के कारोबारियों को तबाह और बर्बाद करके रख देंगे, ये हमारा संकल्प है. इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे. मैं पंजाब की जनता से आज ये विनम्र प्रार्थना करने आया हूँ, जुड़िए हमारी यात्रा के साथ, समर्थन दीजिए यात्रा को, मिलके हम साथ चलेंगे.
2: श्री चौहान नशे नाल बर्बाद हुए परिवारां नूं भी मिले. यह यात्रा पंजाब नूं दरपेश मौजूदा तीन वड्डियां चुनौतियां, वधदी नशाखोरी, विगड़दी कानून व्यवस्था अते शासन दे हर पद्धर ते भ्रष्टाचार ते केंद्र है. उधर नशा मुक्त पंजाब यात्रा दा कल अमलो पहुंचण ते इलाका निवासियां ने स्वागत कीता. इस यात्रा की अगुवाई कर रहे पार्टी के सूबा जनरल सकत्र परमिंदर सिंह बराड़ ने कहा कि यह यात्रा कोई राजनीतिक लाभ लैण लई नहीं, सगों समूहक रूप में इकट्ठे होकर पंजाब अंदर नशे नूं ठल पाउण दी है. यह खबर आकाशवाणी तो सुन रहे हो. साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर. बीजेपी ने अज साबक उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हालिया टिप्पणी नूं लैके कांग्रेस की सख्त आलोचना की है. पार्टी हैडक्वार्टर विखे एक प्रेस कांफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं बीजेपी के बुलारे सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि श्री अंसारी ने 2019 विच लिखी एक किताब का हवाला दिता सी, जिस विच कहा गया सी कि साबक प्रधानमंत्री जवाहर लाल नहरू हिंदू राष्ट्रवाद नूं कम्यूनिज्म नालों वड्डा खतरा मानते सन. श्री त्रिवेदी ने इल्जाम लाया कि कांग्रेस अज खब्बे पक्षी विचारधारा वल वध गई है ते कम्यूनिस्ट विचारधारा तों डूंघी तरह प्रभावित. सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केरला के 18वें अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजी ते शॉर्ट फिल्म उत्सव विच किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग लई मंजूरी देने तो इनकार नहीं किया गया. कांग्रेस नेता शशि थरूर के इल्जामों का जवाब दिंदिया मंत्रालय ने कहा कि 6 फिल्मों लई वाधू जानकारी मंगी गई है. एक सोशल मीडिया पोस्ट विच मंत्रालय ने कहा कि कुछ फिल्मों नूं उन्हां दे विषय कारण समीक्षा लई संबंधित अधिकारी कोल भेजा गया है. श्री थरूर ने इल्जाम लाया कि केरला दीआं 31 फिल्मों नूं फेस्टिवल विच दिखाउण दी आग्या नहीं दित्ती गई. पाकिस्तानी हवाई फौज ने अज तड़के अफगानिस्तान के कुनार ते पक्तिका सूबे विच हवाई हमले किए ने. इन्हां हमलों विच 3 लोग मारे गए ते कई होर जख्मी हो गए. अफगान मीडिया अनुसार यह हमला कुनार सूबे के नुरगल जिले विच तड़के 3 बजे के करीब होया. पक्तिका के बरमल जिले विच भी 2 हवाई हमले किए गए. कुनार अते पक्तिका दोवें सूबे पाकिस्तान नाल लगते ने. यह घटना उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान विच एक पुलिस ठिकाने ते होए हमले तो 2 दिन बाद वापरी है.

0: भारतीय निशानेबाजों ने 3 तमगे जीते हैं। भारत अब तक 6 तमगे हासिल कर चुका है। अब खबरें तफसील से। सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर ममलुकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि फार्मा को विजिलेंस यानी दवाओं के महफूज होने और अद्वियात की निगरानी के शोबे में भारत का सफर गुज़श्ता वर्षों में खुद इन्हिसारी की एक काबिल कदर मिसाल रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में 7वें नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के रस्म इजरा के मौके पर यह बात कही। मोहतरमा पटेल ने कहा कि सरदस्त मुल्क में दवाओं के नामवाफिक असरात की निगरानी करने वाले 1100 से ज्यादा मरकज काम कर रहे हैं और सरकार ये तादाद प्राइमरी हेल्थ सहूलत की सतह तक पहुंचाना चाहती है। उन्होंने बताया कि मुल्क अब आलमी सेहत तंजीम के मरीजों से मुतालिक सेफ्टी डेटाबेस के लिए फार्माकोविजिलेंस डेटा फराहम करता है। मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने इस बात को उजागर किया कि WHO को ये डेटा फराहम करने के एतबार से भारत अब 8वें मकाम पर आ गया है, जबकि 2014 में 123वीं पोजीशन पर था। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के 25 ममालिक भारत की फार्माकोपिया यानी किताबुल अदविया को तस्लीम और कबूल करते हैं। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने लोगों से अपील की कि वो अपने तौर पर किसी भी तरह की दवा लेने से गुरेज करें, डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवा खाएं और किसी भी दवा के अचानक या गैर मुतवक्के साइड इफेक्ट्स को भी नज़रअंदाज ना करें। आज बीजेपी ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की हालिया रायजनी पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की है। पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी तर्जुबान सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि जनाब अंसारी ने 2019 में लिखी गई एक किताब का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया है कि साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू फिरका वारियत से बड़ा खतरा हिंदू कौम परस्ती को मानते थे। जनाब त्रिवेदी ने मुबीना तौर पर कहा कि आज कांग्रेस बाएं बाजू की जानिब झुक गई है और कम्युनिस्ट नजरियात से बहुत ज्यादा मुतासर है। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक नायब सदर की रायजनी कांग्रेस के नजरिए की अक्कासी करती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। वो कल केवड़िया के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश किए जाने की तकरीब की सदारत करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सदर जमहूरिया साल 2024 के भारतीय सिनेमा में हुसूलियाबी को तस्लीम करते हुए कल कौमी फिल्म अवार्ड्स अदा करेंगी। इन अवार्ड्स का सिलसिला 1954 में शुरू किया गया था, जो सिनेमा में महारत पर मुल्क के आला तरीन एजाजात में शुमार होते हैं। ये अवार्ड्स हर साल इत्तलात नशरियात की वजारत के तरफ से फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म पर दिए जाते हैं। इन जुमरों में सिनेमा के बारे में लिखने का अवार्ड भी शामिल है। इन अवार्ड्स के तहत सिनेमा में तख्लीकी और तकनीकी हुसूलियाबियों का एतराफ़ किया जाता है। इन 72वें अवार्ड्स हासिल करने वालों के नामों का ऐलान 3 ज्यूरीज के सदर नशीनों ने 18 जुलाई 2026 को किया था। इनके साथ साथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी अता किया जाता है, जो भारतीय सिनेमा का आला तरीन एजाज है। इशिका की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज बठिंडा में तलवांडी साबू में नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे मरहले का आगाज करेंगे। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी उनके हमराह होंगे। इस यात्रा में उन 3 अहम चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है जिनका इस वक्त पंजाब को सामना है। ये हैं मनुष्यात की बढ़ती लानत, अमनो कानून की खराब होती सूरत हाल और हुक्मरानी की सतह पर बदउनवानी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि इस नज़रिए को राम मंदिर और तहजीबी बेदारी के अहिया के जरिए किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
2: साल 2014 में मरकज में सरकार बदलने और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की तश्कील के बाद भगवान राम के शहर अयोध्या की कायापलट ने रफ्तार पकड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अजीमुशान राम मंदिर की तामीर के राह हमवार हुई और दीप उत्सव तकरीबात जैसे इकदाम से अयोध्या की खोई हुई सकाफती और मजहबी शान शौकत बहाल करने का सिलसिला शुरू हुआ। भगवान राम के इस शहर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से जोर देकर कहा कि अगर भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है तो उन्हें अपने

0: अंदर भगवान राम के अवतार को जगाना होगा।
1: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
0: आज ओहियदम महज आस्था का एक मरकज नहीं, बल्कि मजहबी, सियाहती कनेक्टिविटी और रोजगार के मौकों के शोबे में नए पैमाने तय कर रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
2: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में अक्वाह मुत्तहदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में आला सतह के हफ्ते के लिए भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को इस इजलास से खिताब करेंगे। वह अपने दौरे में मुख्तलिफ कसीर मुल्की और दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। मरकजी इंतखाबी कमीशन की जानिब से जारी किए गए इब्तदाई नतायज के मुताबिक मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात में रूस की हुकुमरान यूनाइटेड रशिया पार्टी ने सबकत हासिल की हुई है। पार्टी को तकरीबन 57.5% वोट मिले हैं। हतमी नतायज 25 सितंबर को आने का इम्कान है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने इससे पहले इंतखाबात में 324 सीटें जीती थीं। ये इंतखाबात यूक्रेन के साथ जारी लड़ाई के दरमियान हो रहे हैं और कीव की जानिब से रात भर का एक बड़ा ड्रोन हमला किया गया है। रूसी अहलकारों ने कहा है कि 1900 से ज्यादा ड्रोन इस हमले में शामिल थे, जिसमें तकरीबन 2 अफराद की मौत हो गई और तेल की एक रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अंडमान निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। एशियन गेम्स में जापान के नागोया में भारत ने मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तीसरा तमगा हासिल कर लिया है। भारतीय निशानेबाज हिमांशु ढिल्लो ने चांदी का, जबकि रुद्रांश पाटिल ने कांसे का तमगा जीता। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल पर मुश्तमिल भारतीय टीम दूसरे मकाम पर रही है। मिक्स मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने खवातीन के 60 किलोग्राम रिवायती जुमरे के सेमीफाइनल में कांसे का तमगा जीता है। भारत ने अब तक 6 तमगे जीते हैं। नौजवानों की उम्र और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खवातीन के रिवायती 60 किलोग्राम जुमरे में कांसे का तमगा जीतने पर सुचिका तरियाल को मुबारकबाद दी है। उन्होंने रुद्रांश पाटिल, पार्थ माने और हिमांशु ढिल्लों को भी मुबारकबाद पेश की है। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत की किताबुल अदविया को 25 मुल्कों में तस्लीम किया गया है, जिससे खुद किफालत के भारत के काबिल कदर सफर की अक्कासी होती है। उन्होंने नई दिल्ली में 7वां नेशनल फॉर्मुलरी जारी किया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट नजरिए से बहुत ज्यादा मुतासिर है। बीजेपी ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की रायजनी की मजम्मत की है। वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वाह मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। रूस में पार्लिमानी इंतखाबात में हुकुमरान यूनाइटेड रशिया पार्टी ने सबकत हासिल कर ली है और जापान में जारी एशियाई खेलों में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारतीय निशानेबाजों ने 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
3: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
4: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
3: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
4: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल के तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
5: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों टेनी की वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमासानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस किला पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ।

0: समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों

0: संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य में राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
1: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है। हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। दो दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज मैं चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
2: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के

0: केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थीं। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। दोस्तों, आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, 23 सितंबर 1943 को मुंबई में एक ऐसी कलाकार ने जन्म लिया जिसने भारतीय सिनेमा को अपनी मुस्कान, एक्टिंग और मोहक अदा से रोशन किया।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोहक कलाकारा तनुजा समर्थ की, जिन्हें दुनिया ने तनुजा के नाम से जाना है। वो जिन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में अपनी अनूठी छाप छोड़ी, एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी आंखों में सपने और दिल में हिम्मत। आज हम इनके करियर और कलरफुल लाइफ के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म इम्तिहान का ये शानदार सा गीत।

जी हाँ श्रोताओं, इस वक्त आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से, और आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो कलाकार हैं वो हैं तनुजा जी। श्रोताओं, तनुजा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सिनेमा सिर्फ पेशा नहीं, लाइफ थी। इनके पिता कुमारसेन समर्थ मराठी सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर थे और माँ शोभना समर्थ हिंदी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस। बड़ी बहन नूतन जो पावरफुल एक्ट्रेस थी, तनुजा की इंस्पिरेशन भी थी। छोटी बहन चतुरा और रेशमा, भाई जयदीप, दादी रत्ना बाई और चचेरी बहन नलनी जयवंत, ये सभी सिनेमा से जुड़े थी। एक तरह से तनुजा का परिवार सिनेमा का मंदिर था। स्कूलिंग के दौरान ही तनुजा के ऊपर सिनेमा का जादू चल गया था। महज 7 साल की उम्र में 1950 में इन्होंने हमारी बेटी में बेबी तनुजा के रूप में डेब्यू किया। माँ शोभना की बनाई फिल्म में नूतन लीड रोल में थी। कैमरा के सामने तनुजा का मासूम चेहरा चमक उठा। इसके ठीक 10 साल बाद तनुजा ने 1960 में माँ शोभना की ही फिल्म छबीली में सपोर्टिंग रोल निभाया, नूतन की छोटी बहन का किरदार। इनकी चंचल मुस्कान और सहज अभिनय ने दर्शकों का ध्यान खींचा। इसके बाद तो तनुजा का करियर चल निकला। अब आगे इनकी फिल्मों से जुड़ी और भी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए इनकी फिल्म इजाजत का ये बेहतरीन सा गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं एक ही कलाकार में कलाकार तनुजा की, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, फिल्म हमारी याद आएगी से लीड एक्ट्रेस के तौर पर तनुजा जी की शुरुआत हुई। 60 के दशक में तनुजा जी के लिए सुनहरा समय साबित हुआ। मेम दीदी, चांद और सूरज, आज और कल, भूत बंगला, बहारे फिर भी आएंगी जैसी फिल्में इनके करियर की टर्निंग पॉइंट थी। फिर देवानंद के साथ इनकी फिल्म ज्वेल थीफ ने इनको स्टारडम की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तनुजा का चुलबुला अंदाज, रहस्यमयी मुस्कान और ने इन्हें हर दिल की धड़कन बना दिया। फिल्म फेयर ने इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया। इसके बाद इन्होंने नई रोशनी, जीने की राह, पैसा या प्यार, हाथी मेरा साथी, मेरे जीवन साथी, दो चोर जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। तनुजा जी हर किरदार में जान डाल देती थी, चाहे वो रोमांटिक हो, हास्य किरदार हो या एक भावुक पत्नी का। दोस्तों, इनका जादू सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बंगाली फिल्मों में भी इन्होंने तहलका मचा रखा था। हिंदी और बंगाली सिनेमा के बीच का ये पुल इनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक था। आगे इनकी पर्सनल लाइफ और कमबैक के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी सुनिए इनकी फिल्म जीने की राह का ये सॉन्ग।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आज की जो कलाकार हैं वो हैं तनुजा जी। दोस्तों, तनुजा जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका करियर जब पीक पर था तभी इन्होंने 1973 में फिल्म मेकर शोमू मुखर्जी से शादी की। शादी के बाद तनुजा ने लीड भूमिका कम की लेकिन सपोर्टिंग रोल्स में चमकी। इस दौरान इन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली फिल्मों में लगातार काम किया। इतना ही नहीं, इन्होंने खानदान, जुनून और आरंभ जैसी टीवी सीरियल्स में भी काम किया। इनकी दो बेटियां हैं, काजोल और तनीषा। बेटी काजोल बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं और तनीषा भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। काजोल की शादी अजय देवगन से हुई है। इसके अलावा रानी मुखर्जी, मोनीश बहल और डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी इनके रिश्ते में आते हैं। अब आगे इनके अवार्ड्स की भी बात करेंगे, पर अभी सुने इनकी फिल्म मेरे जीवन साथी का ये सॉन्ग।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, तनुजा जी ने 2000 के दशक में साथिया, खाकी दीवार और सन ऑफ सरदार फिल्म में सपोर्टिंग रोल की, जिन्हें फैंस का प्यार मिला। 2008 में जीटीवी के रॉक एंड रोल फैमिली सीरीज में तनुजा बेटी काजोल और दामाद अजय देवगन के साथ जज की भूमिका में नजर आई। वहीं 2013 में एक मराठी फिल्म के लिए इन्होंने एक विधवा का रोल भी निभाया, जिसके लिए इन्होंने अपना सिर तक मुड़वा लिया। ये इनका सिनेमा के प्रति डेडिकेशन दिखाता है। अब अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें बेनजीर फिल्म के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड मिला था। पैसा या प्यार फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 2014 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा इन्हें ढेरों अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए इसी बात पर हम सुनेंगे अगला गीत, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं अपने कुछ श्रोताओं के मेल जो हमारे पास पहुंच चुके हैं। ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार, और ये हैं बिहारी कॉलोनी शादरा, दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मेघा, चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशु और रिदान, और ये सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत। और आगे बढ़ते हैं, ये है कुमार हेंडा सहारनपुर से, सैयद मंसूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, और नलेश्वर नगर महाराष्ट्र से

कारण एस नाहवाहकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण सोपान, राजकुमार आशीष, और ये है शिव गोपा, प्रेम, कपिल, शिवांग, संगीता और लिपि, पश्चिम सिंहभूमि, झारखंड से, और ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुंडूर, गुलाल और अविराज सिंह, और ये हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत, उत्तर प्रदेश से, और ये हैं अमर रमेश कुमार खत्री, जाफर सादिक सैक, शंकर गुल शर्मा और टेलर मास्टर कृष्णा लाल खत्री, ये हैं, और ये आगे हैं छत्तीसगढ़ भंवरपुर से चंपा, राधेश्याम और जगदीश जी, गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूंडी, प्रमोद कुमार डूंडी, और ये है गांव नथाना से हरिजिंदर छिंदा, जयवीर, जस्सी, सीता और गीता पंजाब से, और ये है गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, वड़िंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी और आरती जी हैं, और सदा ये हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, और ये हैं नितेश कुमार देवगन और दुर्गा प्रसाद पराग, पूना राम और कृष्णा देवगन जी, और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी। तो चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और कार्यक्रम पहुंच चुका है अपने आखिरी पड़ाव में। हमारे कुछ श्रोता और जुड़ चुके हैं, उनके नाम भी हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत, भारत, धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगा वाले चौक जालंधर से, और इनके साथ हैं ये जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ परियारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा जी का है। और ये है, आगे हम चलते हैं, हमारे कुछ श्रोता बहुत बार मेल कर देते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं। ये हैं हमारे साथ जुड़े हुए गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार ढूंडी और प्रमोद कुमार ढूंडी, नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद और पूना राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हमारे दूसरे श्रोताओं का मेल, और ये हैं हमारे साथ

पीटीआई से नहीं, ये पीटीआई से नहीं है, ये हैं हमारे श्रोता अजीत भावसार, ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये तनुजा जी आज 83 साल की उम्र में भी अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं और सिनेमा से इनका रिश्ता अटूट है। अब भी ये बहुत से इवेंट्स का हिस्सा बन रही हैं और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही इनकी मुस्कान, इनका जज्बा और इनकी विरासत सदा चमकती रहें। ये एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक युग की पहचान है। तो श्रोताओं, जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं इम्तिहान फिल्म के इस गीत के साथ। अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि 3 बजे हम फिर से वापस आएंगे मैटिनी मेलोडीज़ में।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़। श्रोताओं, मैटिनी मेलोडीज़ में मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आप सबको जैसे कि पता है कि मैटिनी मेलोडीज़ में हम पुराने गीतों की बातें करती हैं, तो दोस्तों आज भी हम बहुत ढेर सारे पुराने गीत आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जिस गीत में एहसास है कि जब कभी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान अचानक सामने आ जाता है जिसे हमारी पहली मुलाकात होती है, लेकिन दिल को लगता है जैसे इसे तो हम बहुत पहले से जानते हैं, ना कोई पुराना रिश्ता ना कोई पहचान, फिर भी उसकी आवाज़, उसकी बातें, उसका अंदाज़ कुछ जाना पहचाना सा लगता है। शायद यही एहसास जब कोई अजनबी भी अपना सा लगने लगता है। और इसी खूबसूरत एहसास को बड़ी ही सादगी और शरारत के साथ आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। और तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की इस दिलकश आवाज़ में फिल्म हम सब उस्ताद हैं का ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, बट दोस्तों आप हमें जाने पहचाने नहीं लगते, क्योंकि हम और हमारा और आपका जो रिश्ता है बहुत पुराना है और बहुत ही गहरा है। कहते हैं ना, किसी की नज़र में अपने लिए प्यार और अपनापन महसूस होना शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक है। कभी कभी सामने वाला कुछ कहता नहीं, बस उसकी नज़रें बहुत कुछ कह जाती हैं, और उन्हीं नज़रों में जब हम अपने होने की, अपने प्यार की मंजूरी मिल जाए तो दिल बस यही कह उठता है, अब और क्या चाहिए, मिल गई मंजिल मुझे। इस खूबसूरत एहसास को शब्द दिए हैं राजा मेहंदी अली खां ने, संगीत से सजाया है मदन मोहन ने, और अपनी बेहद खूबसूरत आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। फिल्म है अनपढ़, जो 1962 में बनी थी, और गीत है आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैथिनी मेलोडीज, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, कभी कभी दिल चाहता है कि इस शोर शराबे से, इस भागती हुई दुनिया से बहुत दूर निकल जाए, जहाँ ना कोई शिकायत हो ना कोई फिक्र, बस खुला आसमान हो, थोड़ी सी धूप हो, ठंडी हवा हो और साथ में कोई अपना हो। एक ऐसी जगह जहाँ ज़िंदगी थोड़ी धीमी हो जाए, जहाँ सपनों को खुलकर सांस लेने की जगह मिले। इसी खूबसूरत ख्वाब को आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। फिल्म है दूर गगन की छांव में। इस गीत को लिखा है किशोर कुमार ने ही और संगीत दिया है किशोर कुमार ने ही। तो आइए कुछ पल के लिए उसी दुनिया में चलते हैं जहाँ आसमान भी अपना है और साथी भी अपना। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

दोस्तों, नीला आसमान, हल्की सी धूप और उस पर अगर किसी की मीठी सी आवाज़ कानों पे पड़ जाए तो मौसम अपने आप में सुहाना लगने लगता है। 1950 के दशक के गीतों की यही तो खासियत थी, बिना बहुत कुछ कहे कुछ ही शब्दों में पूरा माहौल बना देना। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये गीत भी कुछ ऐसा ही है। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है ओपी नैयर का और अपनी बेहद दिलकश आवाज़ दी है गीता दत्त ने। तो आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज और आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से। कभी कभी दिल में इतनी बातें होती हैं कि उन्हें कहने के लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते, बस चाहते हैं कि कोई खामोशी से हमारे दिल की आवाज़ सुन ले। और जब वही अनकही दास्तां किसी गीत का रूप ले ले तो लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल की बात ही कह दी हो। ऐसी ही एक दिल को छू लेने वाली दास्तां है फिल्म जाल का ये खूबसूरत सा गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी साहब, संगीतकार SD बर्मन जी, और अपनी गहरी सुकून भरी आवाज़ में इसे गाया है हेमंत कुमार ने। तो आइए कुछ पल ठहरते हैं और सुनते हैं दिल की वही अनकही दास्तां। सुन जा दिल की दास्तां। तो दोस्तों, सुनते रहिए गीत, गुनगुनाते रहिए संगीत, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

जी हाँ दोस्तों, सुन जा दिल की दास्तां, क्योंकि कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिनमें दिल अपने आप गुनगुनाने लगता है। हवा में जैसे कोई मिठास घुल जाती है और चारों तरफ की रौनक देखकर लगता है आज तो बस इस पल को ही जी लिया जाए। ऐसे ही कुछ रंग हैं इस खूबसूरत नगमे में, जहाँ बहार है, समा है और है एक प्यारा सा रोमांटिक सा एहसास। फिल्म है दिल्ली का ठग, जो 1958 में बनी थी। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है रवि ने और अपनी चुलबुली और दिलकश आवाज़ से सजाया है आशा भोसले ने। तो आइए इस सुहाने मौसम और रंगीन समा के साथ सुनते हैं ये बहार ये समा।

श्रोताओं, आकाश में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडी से। दोस्तों, हर दिन की तरह आज का दिन भी अपनी कुछ खूबसूरत यादें छोड़कर अब विदा लेने को है। आपके साथ ये सफ़र का पता ही नहीं चलता और फिर एक पल आता है जब सूरज ढलने लगता है, शाम की रोशनी धीमी पड़ती है और दिल कहता है काश ये खूबसूरत पल थोड़ी देर और ठहर जाए। इसी एहसास को गीतों में पिरोया है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

फिल्म है हमजोरी। तो आज की इस खूबसूरत संगीत यात्रा को यहीं विराम देते हैं और सुनते हैं इस सुहाने एहसास के साथ इस गीत को। तो श्रोताओं, सुनते रहिएगा गीत, गुनगुनाते रहिएगा संगीत, और मैं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी आपसे अनुमति चाहती हूँ। फिर मिलेंगे किसी और गीत, किसी और कहानी और कुछ नई यादों के साथ आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिश।

और नहीं बल्कि बलराम हैं, जिनको जगन्नाथ और परशोत्तम भी कहा जाता है। इस तरह उड़ीसा में पुरी को विष्णु क्षेत्र, कोणार्क को सूर्य क्षेत्र और भुवनेश्वर को हरि क्षेत्र के नाम से पहचाने जाने लगा। पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर की तारीख ये है कि इसको कलिंगा राजाओं ने लगभग 10 साल की मुद्दत में 1148 ईस्वी में तामीर करवाया था। ये मंदिर रकबे के लिहाज से तकरीबन 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। फिर राजा अनंग भीमदेव ने सन 1174 से 1198 तक इसको मजीद वसी किया और मंदिर के वस्त में गर्भगृह में श्री जगन्नाथ, जो श्री कृष्ण का एक रूप हैं, उनको लकड़ी की मूर्ति को नसब कर दिया। तब से मुतवातिर पुरी के इस मंदिर में लाखों जायरीन आते रहते हैं। पुरी की दूसरी खसूसियत उसका महल वकूह है, क्योंकि ये शहर बहर हिंद यानी बे ऑफ बंगाल के किनारे वाक़ है और समंदरी सतह से बिल्कुल मिला हुआ है। पुरी शहर को 1828 में एक ज़िले का मर्तबा दिया गया। मर्दमशुमारी की इस रिपोर्ट के मुताबिक 1901 में इसकी कुल आबादी 19,334 थी। उसका कुल रकबा 15 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पूरे ज़िले का रकबा 300 स्क्वायर किलोमीटर है। पुरी शहर की अहमियत दो एतबार से काबिल ज़िक्र है। इसी वजह से इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो हिस्सा जो मंदिर और उसके जायरीन से ताल्लुक़ रखता है, जो शहर के बिल्कुल बीच में है और पुराना शहर और घनी आबादी वाला शहर कहलाता है। दूसरा हिस्सा सयाहों यानी टूरिस्ट और आम लोगों की तफरीह का मरकज़ है, जो बहर हिंद के किनारे आबाद है। इस हिस्से में जदीद अंदाज के होटल, रेस्टोरेंट, बाज़ार, रास्ते, समंदर के किनारे छोटे छोटे हट बने हुए हैं, जहां सयाह जाते हैं और कुदरत की करिश्मा साजी का लुत्फ उठाते हैं। पुरी के रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पहुंचकर एक सयाह को इस बात का पूरा इख्तियार होता है कि वो मंदिर के करीब किसी होटल में क़याम करना चाहता है, जहां से हर वक्त वो जगन्नाथ मंदिर का दीदार कर सके, या समंदर के किनारे क़याम करके समंदर की दिलफरेब और ठंडी हवाओं का मज़ा ले, क्योंकि लगभग 7 किलोमीटर लंबी समंदरी कतार सयाहों के लिए दिलचस्पी की जगह है। समंदर के किनारे लगभग हर मौसम में लोग, बच्चे, बूढ़े और औरतें पानी में नहाते हुए नज़र आते हैं। नारियल पानी पीने का मज़ा भी यहाँ खूब आता है। घोड़े, ऊँट और बग्घी की सवारी भी लोग करते हैं और ठाठे मारता हुआ समंदर का पानी तेज़ी से दूर किनारे तक चला आता है और फिर वापस चला आता है। कभी कभी ये समंदर रफ भी हो जाता है और समंदर लहरें इस कदर तेज़ी के साथ आती हैं, लगता है सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएंगी। कुछ लोगों को इन सरकश समंदरी लहरों में ही खेलने में मज़ा आता है। वो लोग दूर दूर तक पानी में बहते चले जाते हैं और फिर तैर कर किनारे वापस आ जाते हैं। समंदर के किनारे सूरज निकलने और डूबने का मंजर नहायत दिलकश होता है, जिसको देखने ज़्यादातर सयाह समंदर के किनारे किसी होटल में क़याम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। समंदरी सतह पर वाक़ होने की वजह से यहाँ मौसम मोतदिल रहता है। मौसम गर्मा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 39 डिग्री और कम से कम 20 डिग्री हो जाता है, जबकि सर्दी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री रहता है। अलबत्ता बारिश यहाँ काफ़ी मकदार में होती है और 135 सेंटीमीटर तक बारिश पहुँच जाती है। पूरी शहर जिस कदर मजहबी एतबार से अहम है, उसी कदर सयाहों के लिए अपने महल वकूह के एतबार से भी अहम है। शहर की ज़बान तो उड़िया है, लेकिन यहाँ हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगाली, तेलुगू भी बोली जाती है, क्योंकि उड़ीसा के एक तरफ बंगाल तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और तीसरी तरफ झारखंड की रियासतें मौजूद हैं, जहाँ के लोग पुरी आया करते हैं। यहाँ घूमने का अच्छा मौसम तो अक्टूबर से जनवरी तक है, लेकिन जगन्नाथ यात्रा या कार फेस्टिवल देखने के लिए जून और जुलाई के महीनों में भी पुरी जाया जा सकता है। पुरी शहर बराह रास्त हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों से बजरिए रेल और रोड जुड़ा हुआ है। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से यहाँ बराह रास्त रेलगाड़ियाँ आती और जाती हैं। तहजीबी और सकाफती नुक्ते नज़र से पूरी शहर रवायात का हामिल रहा है। रियासत उड़ीसा के फ़नून लतीफ़ा, दस्तकारी, रेशम के कपड़े और वहाँ का ओडिसी रक्स तो पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि ओडिसी डांस की इब्तिदा पुरी ही में हुई थी, जो टेम्पल डांस की शक्ल में राइज हुआ, जो देवदासियों के जरिए जयदेव गीता गोविंदा के सामने पेश किया जाता था, फ़नून लतीफ़ा में शामिल हो गया और आर्ट के नुक्ते

0: नज़र से ओडिसी डांस को पेश किया जाने लगा और 12वीं सदी से लगातार ये रक्स तरक्की करते करते अब रक्स की अहम कड़ी शुमार किया जाता है। पुरी में खाने पीने की चीज़ों को परोसने का तरीका भी निराला है और आज भी असातीरी अंदाज में केले के हरे हरे साफ पत्तों में वहाँ का भोग मशहूर है, जिसमें चावल, दाल, सूखी सब्जी और मछली पेश की जाती हैं। सेहत के एतबार से भी लोग उनको शौक से खाते हैं। वहाँ का आम पहनावा औरतों के लिए साड़ी और मर्दों के लिए धोती है, जो वही दस्तकारी के जरिए बुना जाता है। खाने की मरगूब गिज़ाओं में घी के भगरे हुए चावल, लीमू चावल, रसगुल्ला, दालमा, साग वहाँ आम तौर पर पसंद किया जाता है। इसके अलावा आम लोगों की पसंद के दूसरे खाने भी मिलते हैं। पुरी को मजमुई तौर पर एक पुराना और रवायती शहर कहा जाता है, क्योंकि आज भी ये तहजीबी और कुदरती मनाजिर का शहर है। उसके आसपास कोणार्क शहर है, जो लगभग 20 किलोमीटर के फासले पर है, जहां कोणार्क का सूरज मंदिर है, और तकरीबन 7 किलोमीटर पर भुवनेश्वर है, जो राजधानी भी है और मंदिरों का शहर भी कहलाता है। यहाँ लोगों का मिजाज नर्म है, वहाँ की उड़िया जबान में भी नरमी है, जिसको ज़रा गौर से सुनने से समझा भी जा सकता है। उर्दू जबान के बोलने वाले यहाँ निस्बतन बहुत कम हैं, इसके बावजूद बाज़ारों में उर्दू जबान बोली और समझी जाती है। हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से सयाह मुल्क के दूसरे तफरीही मकामात का दौरा करने के बाद उड़ीसा में जब कदम रखते हैं, तो उनका सफ़र पूरी जाए बगैर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहाँ कुदरती मनाजिर, समंदरी हवाओं और मजहबी चहल पहल का एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जो सबके लिए काबिल तारीफ है। और कम से कम एक बार पूरी जाकर यहाँ एक दिन क़याम करके हिंदुस्तान के रंगारंग तहजीब और कल्चर का अंदाज़ा लगाना हर सयाह के लिए ज़रूरी है।
1: चमन दर चमन, अभी आपने इस सिलसिले के तहत शहर पूरी के बारे में मालूमात हासिल की। पेश कर रहे थे डॉक्टर अतीक अनवर सिद्दीकी। सामिन, हमें मुल्क का हर गोशा बहुत खूबसूरत मालूम होता है, क्योंकि हमें वतन से मोहब्बत है। हुब्बुल वतनी से मुराद अपने वतन से सच्ची मोहब्बत, उसकी वफादारी और उसकी तरक्की के लिए तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा है।

0: अभी आप ये नगमा सुन रहे थे जिससे हमारे वतन अजीज की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। सामईन, कुछ अल्फाज और जुमले इंसान की ज़िंदगी का रुख मोड़ने की कुव्वत रखते हैं और ये अंधेरों में रोशनी के मीनार की तरह रहनुमाई करते हैं। इंसान को तारीख, मज़हब और बुज़ुर्गों के अकवाल की सूरत में जो हिकमत मिली है वो उन्हीं चंद अल्फाज या जुमलों में समाई हुई है। ज़िंदगी में इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर हमारी सोच मुस्बत होगी तो हमारी ज़िंदगी में अच्छाई और तरक्की होगी। मनफी सोच इंसान को पस्ती में धकेल देती है। अल्फाज सिर्फ आवाज़ों का मजमुआ नहीं होते बल्कि उनमें ज़िंदगी को बदलने की तासीर भी होती है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम हर्फ ताबिंदा।
1: इंसान की सरिश्त में दाखिल है कि वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहता है और अक्सर हालतों में अपनी बात मनमाना भी चाहता है। रूमी ने इस ख्वाहिश को हिमाकत का नाम देते हुए कहा है, ये अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भी कैसी हिमाकत है। आखिर इस चीज़ की तुम्हारे लिए इतनी अहमियत क्यों हो कि कम अज़ कम एक फ़र्द तुम्हारे अंदर झांक सका है। दूसरों से सिर्फ वही बात करो जो उनके लिए अहमियत रखती है। सिर्फ वही बात पूछो जिसके जानने की तुम्हें ज़रूरत है और सिर्फ इसलिए बहस करो कि तुम्हें किसी नतीजे पर पहुंचना है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के दो सीधे तरीके हैं, एक तहरीर है दूसरा तकरीर। तरसील ज़ात के यही तरीक़े हैं। तहरीर के बारे में कामियों का ख्याल है, लिखना तो खुद एतमादी पैदा करता है।

0: ये खुद एतमादी के तुम्हारे पास कहने को कुछ है और ये कि कुछ कहा जा सकता है। ये खुद एतमादी कि जो कुछ तुम महसूस करते हो, जो कुछ तुम वाकईतन हो, वो मिसाल बन सके, उसकी अहमियत है। ये खुद एतमादी कि कोई दूसरा तुम्हारी जगह नहीं ले सकता और ये कि तुम में पूरी तवानाई है। खुद एतमादी से बढ़कर दूसरी तवानाई क्या हो सकती है। तहरीर को गुफ्तगू से ज़्यादा इजहार ज़ात का वसीला कहा जाता है, लेकिन जब किसी के पास बुलंद ख्यालात हों मगर दिल छोटा हो तो ऐसा शख्स बड़े अल्फाज लिखता है और छोटे और नीच काम करता है। बकौल गौतम बुद्ध, वो लोग जो बहुत अच्छी बातें करते हैं मगर उतने अच्छे काम नहीं करते, खूबसूरत रंगीन बेखुशबू फूल की तरह होते हैं, मगर वो लोग जो बातों की तरह अपने कामों में भी अच्छे होते हैं, उन फूलों की तरह हैं जो खुश रंग भी हैं, हसीन भी और खुशबूदार भी। फूलों की खुशबू या संदल की महक हवा की मुखालिफ सम्त में उड़कर नहीं जा सकती, लेकिन अच्छे लोगों की खुशबू हवा की मुखालिफ सम्त में भी पहुंच जाती है। लेकिन शख्सियत इतनी मुकम्मल कब होती है कि ज़ाहिर व बातिन यकसा हों। ज़बान और दिल में बौध रखा जाता है, इसीलिए लाविस ने कहा है कि जो जानते हैं वो बोलते नहीं हैं और जो बोलते हैं वो जानते नहीं हैं। इसलिए अजब अलमिया है कि ज़िंदगी में हमें ज़्यादा उन लोगों को सुनना पड़ता है जो कुछ जानते नहीं, बोले जाते हैं और चाहते हैं कि उन्हें मुस्तकिल सुना जाए। रूमी का कहना है कि अगर तुम्हारी आरजू है कि दुनिया के शोर और हंगामे में तुम्हारी आवाज़ लोग सुन लें, तो तुम्हें अपनी रूह में सिर्फ एक तनहा ख्याल को जारी और सारी करना होगा। एक और सिर्फ एक ही ख्याल को अपने में समोए रहने वाला शख्स वो होता है जो सियासी और समाजी इनकलाब लाता है, जो सल्तनतें कायम करता है, जो दुनिया को वो कानून देता है जिस पर दुनिया चलती है। जब इसलिए बोला जाए कि दूसरे सुन सकें, तो यकीनन एक नज़रिया और एक ख्याल होना चाहिए जो सुनने वाले को अपील करे। लेकिन जब खुद कलामी मंजूर हो कि ख्यालात की भरमार भी मुमकिन है, क्योंकि आम तौर से तो हम खुद से ही बात करते हैं, जिसके लिए खलील जिब्रान ने कहा है कि हम सिर्फ इसीलिए तो बोलते हैं कि अपने आप से खिताब कर सकें, मगर बसा औकात आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद हो जाती है और दूसरे हमें सुन लेते हैं।
1: अभी आप अक़वाले ज़र्री का प्रोग्राम हरफ़े ताबिंदा सुन रहे थे। आइए अब कव्वाली की तरफ रुख करते हैं। सामईन, गज़ल या किसी भी कलाम को कव्वाली की सूरत गाया जा सकता है। समात फरमाइए ये कव्वाली।

अभी आप चांद अफजाल और साथियों की गाई कव्वाली सुन रहे थे। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम कहकशां, जिसे आपके लिए तरतीब दिया था इंतजार अली सैफी ने। अब आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए। उर्दू मजलिस के अगले शुमारे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिश। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेज़ी में।

0: Ilong kaay na.
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को, स्वागत है आपका खेल खिलाड़ी में। खेल खिलाड़ी एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको बताता है खेलों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में। और आज आपके साथ जुड़ी हूं मैं विदुषी वत्स, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शिवांश। नमस्कार शिवांश। आज हमारे पास क्या क्या है हमारे श्रोताओं के लिए, हम उन्हें बता देते हैं। आज हमारे पास है, सबसे पहले एशियन गेम्स के बारे में है। आज हमारे पास है जापान और इंडिया के बीच में मैत्री क्रिकेट का होने वाला T20 मैच के बारे में। आज हमारे पास है चेस। आज हमारे पास है U19 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले हम बात करेंगे आज एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स में आज का दिन बहुत ही धमाकेदार रहा है। आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे स्पोर्ट्स में इंडिया का क्या योगदान रहा उसके बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। एशियन गेम्स 2026 में आज यानी 21 सितंबर सोमवार को भारतीय दल के लिए एक्शन से भरपूर दिन रहा। भारत ने शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत ने अपना पहला एशियन गेम्स मेडल जीता, जबकि हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और वुशु में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कई महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। आईची नागोया में चल रहे इन एशियन गेम्स में आज भारतीय खिलाड़ियों का एक्शन कई अलग अलग खेलों में रहा। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि आज भारत के लिए दिन कैसा रहा। सबसे पहले रुख करते हैं शूटिंग की तरफ, जहां आज भारत के लिए सबसे बड़ी मेडल हॉल देखने को मिली। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के हिमांशु ढिल्लों, रुद्रांश पाटिल और पार्थ माने ने टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। भारतीय टीम ने कुल 1890.1 अंक हासिल किए। 10 मीटर एयर राइफल में क्वालिफिकेशन के बाद शीर्ष खिलाड़ियों को इंडिविजुअल फाइनल में जगह मिलती है, जबकि टीम कॉम्पिटिशन में एक देश के 3 खिलाड़ियों के प्रदर्शन को जोड़कर टीम का स्कोर तय किया जाता है। एशियन गेम्स में शूटिंग में इंडिविजुअल और टीम दोनों फॉर्मेट्स में मेडल दिए जाते हैं, इसलिए एक ही डिसिप्लिन से एक से अधिक मेडल अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। भारत के लिए अच्छी खबर यही खत्म नहीं हुई। इंडिविजुअल फाइनल में भी भारत ने 2 मेडल्स अपने नाम किए हैं। हिमांशु ढिल्लों ने सिल्वर यानी रजत पदक जीता है, जबकि रुद्रांश पाटिल ने ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है। यानी सिर्फ पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में आज भारत ने कुल 3 मेडल हासिल किए, एक टीम सिल्वर, एक इंडिविजुअल सिल्वर और एक इंडिविजुअल ब्रॉन्ज। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि टीम सिल्वर तीनों खिलाड़ियों यानी हिमांशु ढिल्लों, रुद्रांश पाटिल और पार्थ माने ने मिलकर जीता है। इंडिविजुअल कंपटीशन में हिमांशु सिल्वर और रुद्रांश ब्रॉन्ज लेकर लौटे। हमारे सहयोगी शाहिद आजमी जी ने बात करी थी हिमांशु और पार्थ दोनों से ही उनके एशियन गेम्स में जाने से पहले। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हिमांशु की तैयारी कैसी थी एशियन गेम्स से पहले।
2: ट्रेनिंग पे कॉन्फिडेंस है और कोचिज पे भी वो है कि अच्छा होगा, अच्छे साथ देंगे हमारा और अच्छा ही होगा सर हमारा जो कुछ भी होगा। अभी तो ट्रेनिंग पे ही फोकस है, बिलीव है सब हर एक चीज पे, तो बस वही हमारा कि अच्छा ही होगा हमारा।
1: इसी के साथ आइए सुनते हैं कि पार्थ ने एशियन गेम्स में जाने से पहले कौन से मेंटल एलिमेंट की तैयारी की बात की थी।
3: ट्रेनिंग का प्लान बना हुआ है, बोथ मेंटल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, एंड हमें उतना भरोसा है ट्रेनिंग पे हमारे कि अभी कोई भी कंपटीशन आ जाए वी आर रेडी फॉर इट मेंटली आल्सो, बिकॉज एशियन गेम्स इज अ प्लेटफॉर्म, इट्स मोर लाइक हाउ यू आर परफॉर्मिंग वेल मेंटली। टेक्निकली तो एवरीवन इज गुड हियर, बट द डे बिलोंग्स टू हिम हु परफॉर्म्स, हु गिव्स हिज मेंटल ट्रेनिंग एट इट्स बेस्ट।
1: अब शूटिंग की दूसरी स्पर्धाओं की तरफ चलते हैं। पुरुषों की स्कीट में आज कंपटीशन का पहला दिन था। स्कीट में खिलाड़ी

टारगेट्स को हिट करने के लिए अलग अलग स्टेशन से कम्पीट करते हैं और क्वालिफिकेशन कई स्टेजेस में आगे बढ़ती है। आज के परफॉर्मेंस के बाद फाइनल स्टैंडिंग्स अभी पूरी तरह तय नहीं हुई हैं, क्योंकि कंपटीशन आगे भी जारी रहेगा और दो दिन। भारत के अनंतजीत सिंह नरूका ने 47 यानी 47 अंक हासिल किए और 21वें स्थान पर रहे। मायराज अहमद खान ने 45 अंक के साथ 26वां स्थान हासिल किया, जबकि भवतेग सिंह गिल ने 44 अंक के साथ 27वें स्थान पर अपनी जगह बनाई। तीनों भारतीय शूटर्स का कम्बाइंड स्कोर 136 रहा और भारतीय टीम स्टैंडिंग्स छठे स्थान पर रही। वहीं अगर महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में चलें तो भारत की तीन खिलाड़ी मैदान में थी। रायजा ढिल्लो ने 46 अंक के साथ 9वां स्थान हासिल किया, परिनास धलीवाल ने 44 अंक के साथ 14वां स्थान हासिल किया, जबकि महेश्वरी चौहान ने 42 अंक के साथ 16वां स्थान हासिल किया। तीनों भारतीय खिलाड़ियों का कम्बाइंड स्कोर 132 रहा, जिसके साथ भारतीय टीम स्टैंडिंग्स तीसरे स्थान पर रही। आइए अब चलते हैं स्विमिंग की तरफ। पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज ने हीट्स में हिस्सा लिया। श्रीहरि ने हीट्स में 25.37 सेकंड का समय निकालकर फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। फाइनल में श्रीहरि नटराज ने 25.52 सेकंड का समय निकाला और 10वें यानी अंतिम स्थान पर रहे। उनका नेशनल रिकॉर्ड और पर्सनल बेस्ट 25.18 सेकंड का रहा है। वहीं अगर ऋषभ दास की बात करें तो 50 मीटर बैक स्ट्रोक हीट्स में 11वें स्थान पर रहे और फाइनल में जगह नहीं बना सके। अब अगर फ्री स्टाइल स्पर्धा की ओर चले तो पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल में आकाश मानी और हीर गितेश शाह ने हिस्सा लिया, लेकिन दोनों फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में धनुष सुरेश भी फाइनल में जगह नहीं बना सके। वहीं 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में सजन प्रकाश, अनीश सुनील कुमार गौड़ा, वेदांत माधवन और दक्षिण शशि कुमार भी भारतीय टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। रिले में चार स्विमर्स बारी बारी से निर्धारित दूरी पूरी करते हैं और पूरी टीम का कम्बाइंड टाइम तय करता है कि टीम आगे क्वालिफाई करेगी या नहीं। अब बात करते हैं वुमेन्स हॉकी की, जहां भारत ने एक और बड़ी जीत दर्ज की है। इंडिया ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया। हाफ टाइम तक इंडिया 9-0 से आगे था और दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम ने अपना अटैकिंग प्रेशर बनाए रखा। हॉकी में एक टीम के 11 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। मुकाबला 4 क्वार्टर्स में खेला जाता है। टीम का लक्ष्य ओपोनेंट से ज्यादा गोल्स करना होता है और आज भारत ने पूरे मुकाबले में इसी अटैकिंग अप्रोच को बनाए रखा है। इंडिया की ओर से नवनीत कौर, ऋतुजा पिसाल और दीपिका सहरावत ने हैट्रिक्स दर्ज करी आज, यानी तीनों खिलाड़ियों ने तीन तीन गोल्स किए। यह इंडिया के टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बड़ी जीत है। इससे पहले इंडिया ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। अब इंडिया का अगला मुकाबला 23 सितंबर को थाईलैंड के साथ होगा। आइए सभी खेलों के बारे में बात करते हुए अब चलते हैं बैडमिंटन की ओर। मेंस यानी पुरुष के टीम इवेंट के फर्स्ट राउंड में इंडिया का सामना बांग्लादेश से हुआ और इंडियन टीम ने मुकाबला 3-0 से अपने नाम किया। पहले मुकाबले में लक्ष्य सेन ने आयमान जमान को 21-4 और 21-12 से हराया। दूसरे मुकाबले में आयुष शेट्टी ने गौरव सिंघा को 21-4 और 21-13 से हराया। तीसरे मुकाबले में किदंबी श्रीकांत ने अल अमीन जुमार को 21-15 और 21-12 से हराकर इंडिया को 3-0 की जीत दिला दी। बैडमिंटन टीम इवेंट में अलग अलग सिंगल्स और डबल्स मैचेस के रिजल्ट्स मिलकर पूरी टीम टाई का फैसला करते हैं। इंडिया ने आज तीनों मैचेस जीतकर बांग्लादेश को एक भी मैच जीतने का मौका नहीं दिया। इसी रोमांच को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां आज इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ महिला और पुरुष दोनों टीम इवेंट्स में जीत दर्ज की है। सबसे पहले वुमेन्स टीम इवेंट की बात करेंगे, यानी महिला हॉकी यानी महिला टेबल टेनिस टीम की बात करी जाएगी, जिसने पाकिस्तान को 3-0 से हराया है। सुतीर्था मुखर्जी ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद एशियन गेम्स में अपना डेब्यू कर रही सिंड्रेला दास ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना मुकाबला जीता। उनके जीतने के बाद भारत की बढ़त 2-0 हो गई। इसके बाद श्रीजा अकुला ने तीसरा मुकाबला जीतकर भारत को 3-0 से जीत दिलाई। इस जीत के साथ
भारत ने ग्रुप

में अपनी पोजीशन और मजबूत। और अब आते हैं मेंस टीम इवेंट यानी पुरुषों की टेबल टेनिस टीम के इवेंट के पास, जहां उन्होंने भी पाकिस्तान को 3-0 से हराया। रोमांच बहुत ही भरपूर रहा जब पहले मुकाबले में हरमीत देसाई का सामना मोहम्मद खान से हुआ। हरमीत ने शुरुआत से ही शानदार कंट्रोल दिखाया। उन्होंने पहला गेम 11-4, 11-3 और 11-5 से अपने नाम करा। इस तरह हरमीत ने इंडिया को 1-0 की शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद साथियान का सामना अब्बास खान से हुआ। साथियान ने पहला गेम 11-1 से जीता। दूसरे गेम में अब्बास खान ने कुछ रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन साथियान ने फिर से कंट्रोल हासिल करते हुए 11-8 से जीत दर्ज करी। गेम का मुकाबला काफी क्लोज रहा, लेकिन साथियान ने प्रेशर के मोमेंट्स में संयम बनाए रखा और 11-9 से गेम जीत कर अपने नाम किया। अब इंडिया 2-0 से आगे था। तीसरे मुकाबले में पायस जैन ने मोहम्मद खान के खिलाफ शानदार शुरुआत की। उन्होंने पहला गेम 11-2 और दूसरा गेम 11-5 से अपने नाम बनाया और दबदबा कायम रखा। तीसरे गेम में भी पायस ने मुकाबले पर पूरा कंट्रोल बनाए रखा और 11-5 से गेम जीतकर इंडिया को पूरी टीम टाई में 3-0 की जीत दिला दी। यानी वुमेन्स और मेन्स, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरीज में भारत ने आज पाकिस्तान के खिलाफ टेबल टेनिस टीम टाई जीती हैं। अब चलते हैं कबड्डी की ओर। मेंस ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने जापान को 49-24 से हराया। हाफ टाइम तक भारत का स्कोर 31-9 से आगे था। दूसरे हाफ में पवन सहरावत, अर्जुन देशवाल और असलम इनामदार को भी कोर्ट पर उतारा गया ताकि उन्हें आगे के अहम मुकाबलों से पहले गेम टाइम मिल सके। कबड्डी में एक समय पर एक टीम के साथ खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं। रेड और ओपोनेंट हाफ में जाकर पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश करता है, जबकि डिफेंडर्स उसे रोक कर टैकल पॉइंट्स हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए गेम में रेड और डिफेंस दोनों का बैलेंस बेहद महत्वपूर्ण होता है। भारत ने जापान के खिलाफ शुरुआत से ही बड़ा एडवांटेज इसी को बनाया और अंत में 49-24 से मुकाबला अपने नाम किया। अब वुमेन्स कबड्डी की तरफ आते हैं, जहां इंडिया का ग्रुप ए मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ रहा और मैच के शुरू से ही भारत ने अपना दबदबा बनाया रखा और एक अर्ली लीड ली गेम में 12-3 से। अब बात करते हैं वुशु की। वुशु में अलग अलग डिसिप्लिन्स होते हैं। ताउलू इवेंट्स में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को जजेस द्वारा स्कोरिंग के आधार पर असेस किया जाता है, जबकि सांडा कॉम्बैट फॉर्मेट है। महिलाओं के चोंगक्वान फाइनल में नियमान वांगसू ने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रही। महिलाओं के 60 किलो सांडा राउंड ऑफ 16 में रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की शिखा खातून से हुआ। रोशिबिना ने पॉइंट डिफरेंस के आधार पर मुकाबला जीत लिया और अगले राउंड में अपनी जगह बना ली। वहीं पुरुषों की बात करें तो सांडा राउंड ऑफ 16 में आर्यन ने अफगानिस्तान के शहजादा साफी को 2-0 से हराया और इस जीत के साथ आर्यन ने अगले राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब बात करते हैं बॉक्सिंग की। पुरुषों के 70 किलो राउंड ऑफ 32 में सुमित का सामना थाईलैंड की सिनसिरी से हुआ। सुमित ने मुकाबला 5-0 से जीत लिया और अगले दौर में पहुंच गए हैं। बॉक्सिंग के बारे में आपको बताएं तो एथलीट्स अलग अलग वेट कैटेगरीज में कम्पीट करते हैं और जजेस पूरे बाउट के दौरान उनकी पंचिंग, उनका डिफेंस, उनका कंट्रोल और उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर स्कोरिंग करते हैं। सुमित ने आज सभी जजेस का डिसीजन अपने पक्ष में किया। और इसी के साथ साथ अगर बात करें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA की, वहाँ आज भारत ने हिस्ट्री बनाई है, इतिहास रचा है। वुमेन्स ट्रेडिशनल 60 किलो सेमीफाइनल में सूचिका तरियाल का मुकाबला सिंगापुर की त्यो हुई हुन से हुआ। मुकाबला काफी करीबी रहा और एक्स्ट्रा टाइम तक गया, लेकिन अंत में सूचिका को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सेमीफाइनल तक पहुंचने के कारण उनका ब्रॉन्ज मेडल पहले ही सुनिश्चित हो चुका था। इस तरह सूचिका तरियाल ने एशियन गेम्स में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला मेडल जीता है। MMA के बारे में अगर आपको बताएं तो अलग अलग कॉम्बैट डिसिप्लिन्स की टेक्निक्स को एक कॉम्पिटिटिव रूल सेट के तहत मिलता है और मुकाबले में वेट कैटेगरीज भी होती हैं। एशियन गेम्स में MMA की यह पहली अपीयरेंस है, इसलिए सुचिका का ब्रॉन्ज मेडल भारतीय खेल

के भारतीय खेलों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब अगर बात करें पुरुषों के टीम रीगू ग्रुप बी में, जहां भारत का सामना जापान से हुआ, इंडियन टीम को जापान के खिलाफ 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस खेल में खिलाड़ी बॉल को मुख्य रूप से अपने पैरों और शरीर के अनुमत हिस्सों पर कंट्रोल करके नेट के ऊपर ओपोनेंट के कोर्ट

0: करता है और यही कृषि विमान की खास बात है।
1: और जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर साहब, हमारे खेत की जोत लगातार घटती जा रही है, छोटी छोटी खेत हैं लोगों पे।
0: जी सर।
1: तो ड्रोन तो एकदम जोर से चलता है।

0: तो उनके लिए किस तरह उपयोग में आ सकता है?
1: इसकी यही विशेषता है सर कि वो क्या करेगा, चाहे आपका खेत एक बीघे का हो चाहे 5 एकड़ का हो, वो क्या करेगा, जब आपके पास मोबाइल आता है तो आप देखकर बताते हैं कि भाई ये मेरा क्षेत्र है, यदि 1 बीघे में रहा तो 1 बीघे में छिड़काव करेगा, 2 एकड़ में रहा तो 2 एकड़ में छिड़काव करेगा। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक होने की वजह से कई लोग शुरू में कहते हैं साहब मेरा खेत छोड़ के मेड है, उसके बाद में बाजू वाले के खेत में दवाई चले जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भ्रांति पे मत जाइए, जो आपका खेत है उसी खेत में छिड़काव करेगा और आपकी एक बूंद दवाई भी दूसरे के खेत में नहीं जा सकती है, आपकी दवाई आपके ही खेत में छिड़की जाएगी, चाहे वो 1 बीघे का हो चाहे 10 एकड़ का हो।
0: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों के मन में ये भी जिज्ञासा हो रही है कि भाई जब हम दवा का इस्तेमाल करेंगे खेत पर जाकर, तो क्या हाथों से ही दवा उतना ही डालना पड़ेगा जितनी जरूरत है, या इसका भी कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है?
1: इसका जो टैंक होता है वो 10 से 12 लीटर का होता है
0: जी।
1: तो 10 लीटर का टैंक हुआ तो उसमें 10 लीटर पानी डालते हैं और जितनी दवाई है वो उसमें डाल देते हैं। तो आप अच्छे उपयोग के लिए क्या करना चाहिए कि बाहर बाल्टी में एक 10 लीटर पानी लेना चाहिए, दवाई डाल देनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे से घोलकर उसका जो टैंक है उसमें डाल दीजिए
0: जी,
1: फिर वो ऑटोमेटिक उड़ के ऑटोमेटिक तरीके से छिड़काव करके आ जाएगा।
0: मतलब जितने इसको दवा डालनी है वो 10-12 लीटर का जो टैंक है,
1: हाँ,
0: उसके हिसाब से वो 1 एकड़ के लिए है।
1: 10 लीटर पानी से ज्यादा आपको नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं साहब 20 लीटर का दो, 50 लीटर का दो, आपको कोई जरूरत नहीं। खेत के लिए आपको 10 लीटर का टैंक चाहिए जिसके अंदर पानी डले, 1 एकड़ के लिए 10 लीटर ही पानी चाहिए, न 11 चाहिए न 9 चाहिए, और वो प्रिस्क्राइब फॉर्मूला है, उसके हिसाब से दवाई अच्छे से मिलाकर घोलकर आप उसके टैंक में डाल दीजिए। कई खेतों में ऐसा भी होता है कि एक के साथ दो तरह की दवाई मिलाई जाती है, तो जो भी दवाई आपको मिश्रण करना है आप बाहर करिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए, टैंक में डालिए और टैंक उसको अपने आप छिड़काव करेगा।
0: आखिर में डॉक्टर गोविंदा जी, हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि नई तकनीक अपना के किस तरह हम उत्पादन बढ़ाएं और किस तरह पैसे को बचाएं?
1: जब भी नई तकनीक आती है, दुनिया के किसी मुल्क में जाइए, शुरुआत में मुश्किल लगती है। जैसे मोबाइल था, कितना मुश्किल लगता था, आज 1 साल का बच्चा भी जो है घर में पैदा होते ही मोबाइल चलाने लग जाता है। सेम चीज टेक्नोलॉजी के साथ है। मुझे लगता है जो आज की लीडरशिप है जो ड्रोन को लेकर आई, इससे बड़ा विजन नहीं हो सकता। आने वाले समय में भारत में 6,38,000 गांव है, हर गांव में 10 ड्रोन चाहिए कम से कम, ताकि एरिया पूरा तरीके से कवर हो। एक और बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करने से आपका खर्चा घटेगा ना कि आपका खर्चा बढ़ेगा, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा आएगा, समय भी कम लगेगा। तो सब लोगों को टेक्नोलॉजी का जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम कृषि विमान ड्रोन बनाते हैं
0: जी,
1: और वागो ग्रीन के माध्यम से काम करते हैं, तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ, आपको जो भी ड्रोन के बारे में भ्रांति है या आपको जानकारी लेनी है तो आप हमारे कृषिविमान.com के जा सकते हैं। सारे YouTube पे हमने वीडियोस लगा रखे हैं। उसके अलावा हम भारत के अलग अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग देते हैं और आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। हम हर सप्ताह एक क्लास लेते हैं जहां के ऊपर अलग अलग राज्य के लोग जुड़ते हैं और हम उनको ड्रोन के बारे में जानकारी देते हैं।
0: डॉक्टर गोविंदा जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे किसान भाई भी भाई खेती में उत्पादन बढ़ाएंगे, और भाई जिसने मोबाइल चलाना सीख लिया वो तो पायलट बन ही जाएगा, इसमें कोई दोरा नहीं। डॉक्टर गोविंदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साहिद भाई, अभी हमारे भाई सुन रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ग्रामीण युवाओं के लिए ड्रोन सेवा उद्यम। डॉक्टर शंकर गोयनका जो प्रबंधन निदेशक ड्रोन फरीदाबाद से हैं और इनसे बातचीत कर रहे थे PS भाटी। तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी हमारे युवा भाइयों के लिए।
3: जी सही कह रही बन्ना बहन, ये बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने जो बताया कि इसमें दवाई की खपत कम होती है, समय बचता है, लेबर बचता है और इस तरीके से बड़ी बचत हो जाती है,
2: और सबसे बड़ी बात रोजगार मिलता है।
3: ये एक बड़ी चीज कही आपने
2: जी। और अब आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं अपने भाइयों को एक रागनी पुरनमल की आवाज में, और किस्सा है राजा
3: उतनापात
2: का, जो कि ध्रुव के पिता थे। तो आइए सुनते हैं ये किस्सा।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे ये किस्सा पूरनमल की आवाज में। और देखिए आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में।
1: बहन, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है,
0: जी
1: ये हमारे बहनों भाइयों के लिए रोज़गार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, ना कारोबार करने के लिए सरकार की बहुत बढ़िया योजना है, जिसमें उनको वित्तीय सहायता दी जाती है।
0: जी
1: और इसमें ये सहायता जो है कि तीन चार तरह से दी जाती है, अलग अलग श्रेणी में कह सकती
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल। रेड़ी पटरी वाले हुए हमारे, जो थोड़े से ऊपर दुकान वाले हुए और जिनकी दुकानें हैं उनके लिए, और जो बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं, तो मतलब स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं,
1: नहीं,
0: इनके
1: दरअसल
0: लिए
1: इस
0: अलग अलग तरीके से
1: हाँ
0: लोन दिए
1: हाँ हाँ
0: जाएंगे। जो रेड़ी पटरी

0: कंट्री वाले हैं उनको शिशु लोन दिया जाएगा 50,000 रुपये तक का, और जो किशोर लोन जो दिया जाता है वो 50,000 एक से लेकर 5 लाख रुपए तक दिया जाता है। जैसे दुकान में आप सामान भरना होता है, आपको किसी तरह की बड़ी दुकान अगर आप खोलना चाहते हैं तो इस तरह आप लोन ले सकते हैं। और जो तरुण लोन की व्यवस्था है वो 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक है, और वो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक तो है, और उसमें तरुण प्लस भी है एक, जो
1: हाँ
0: कि 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं और अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते
1: दरअसल
0: हैं।
1: इसकी इसका जो हाइपोथेसिस है ना, इसकी जो संकल्पना है वो इस तरह से है कि आप जब काम शुरू करते हैं तो छोटे बजट की ज़रूरत होती है, ठीक
0: जी
1: है, कम बजट में आप काम शुरू करें। फिर जब कारोबार शिशु अवस्था में होता है तो थोड़ी रकम दी जाती है, फिर उससे और आगे बढ़ा तो
0: बिल्कुल,
1: किशोर के स्तर पे, ऐसा ना समझा जाए कि वो बच्चे के लिए है ये किशोर के
0: नहीं
1: लिए,
0: नहीं नहीं
1: ये
0: ये
1: बिजनेस
0: इनके बिजनेस
1: बिजनेस
0: के
1: जैसे जैसे बढ़ता है
0: बढ़ता है।
1: उसके स्तर से, तो किशोर होता है, फिर तरुण हो जाता है, फिर उससे भी आगे बढ़ना है तो तरुण प्लस है।
0: जी
1: बड़ी चीज़ ये
0: बिल्कुल।
1: है कि
0: और
1: आप किसी भी बैंक या फिर NBFC जो होती है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां,
0: जी
1: उनके जरिए भी, उनसे भी आप आवेदन करके उनसे भी ये इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल, और ये बिना गारंटी का लोन होता है।
1: ये इसकी
0: आप
1: सबसे
0: सब
1: बड़ी खासियत है।
0: तो आपकी आपको किसी गारंटर की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप अपना पहचान पत्र और आधार कार्ड ये जमा करके इस लोन का फ़ायदा उठा
1: ये तो
0: सकते
1: बड़ी बात
0: हैं।
1: बताई आपने, और एक बार फिर चलते हैं अपने बहनों भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं।
0: जी तो
1: तो
0: सुनवा
1: हाँ, अब सुनवाते हैं इंद्रपाल सिंह की आवाज़ में ये रागनी।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे इंद्रपाल सिंह की आवाज़ में ही रागनी, और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम संसार, प्रस्तुत किया वंदना रानी और शाहिद परवेज ने। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और अब समय हो चला है हिंदी में समाचार का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर।

0: भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भेरुंदा तहसील के गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1,00,000 रुपए और बहरा खेड़ी गांव के दूसरे गोदाम से 60,000 रुपए की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने तीन पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इससे पहले कल एला विनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। वहीं कबड्डी में पुरुष टीम ने जापान को और महिला टीम ने बांग्लादेश को पराजित किया। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:05 और ये

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। साहिद भाई, देखिए हमारे जो किसान भाई बहन हैं अपनी खेती को लेके बहुत ही चिंतित रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कभी
1: बहुत सजग
0: बर्स
1: रहते हैं।
0: बिल्कुल चाहे अगर बरसात हो जाती है तो उनको चिंता हो जाती है कि हमारी बेल वाली सब्जियां गल जाएंगी, और सर्दियों में बरसात हो जाती है तो ये रहता है गेहूं की फसल अगर कटी खड़ी है तो वो गिर जाएगी,
1: बन्ना बहन, बड़ी
0: गर्मियों
1: बात
0: में
1: यह
0: हो
1: है ना कि
0: जाती है तो
1: किसान हो चाहे गोपालक हो, वो अपने पशु की, अपनी खेती की, अपने फसल की ना बच्चे की तरह देखभाल करता है।
0: बिल्कुल मतलब हर मौसम में उनको चिंता ही लगी रहती
1: जी
0: है कि
1: हाँ
0: बरसात आ गई तो हमारी फसल को क्या
1: भाई,
0: नुकसान
1: ये
0: होगा।
1: परंपरा रही है कि खेत के मेड़ पे बैठ के ना फसल को निहारना सुबह शाम,
0: बिल्कुल
1: ना ये परंपरा रही है, और इसको किसान की उपासना कहा जाता है। और ये माना जाता है कि एक किसान अपनी फसल से बातचीत कर रहा है।
0: बिल्कुल, और करता भी है क्योंकि वो सुबह शाम अगर जाता है तो अपनी फसल को देखता है, उसको देख के खुश होता है।
1: जी हाँ
0: और जब उसकी फसल बाई चांस किसी वजह से बरसात में या किसी वजह से खराब हो जाती है, उससे ज़्यादा दुखी इंसान कोई नहीं होता। तो ऐसे ही अगर हमारे जो भाई हैं अपने जल को संचय कर लें, या तो संचय कर लें अगर वो पानी ज़्यादा भर गया,
1: हाँ आप सिंचाई की बात कर रही
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: क्योंकि उसे अगर इकट्ठा कर लेंगे तो बाद में काम आ जाएगा।
1: जी
0: और सिंचाई योजना के माध्यम से अगर हम उतनी ही सिंचाई करें जितनी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ट्यूबवेल चला के सो जाते हैं और पानी भर जाता है,
1: हाँ बंदा बहन,
0: ये बहुत
1: उसमें
0: गलत
1: उसमें
0: है।
1: नहीं, एक तो पानी जो है ना, जो ज़मीन के अंदर से पानी निकाल रहे हैं, अति दोहन हुआ। दूसरे बड़ा नुकसान ये होता है कि मिट्टी में जो खाद पानी हमने दिया है वो रिस्क के पताल में चला जाता है।
0: बिल्कुल, और ये जब वो पानी बेकार हो जाता है, खेती की भी फसल में भी पानी भर जाता है और फसल भी बेकार हो जाती है। कितनी बार ऐसा होता है पानी ज़्यादा भर जाता
1: इसलिए वही करना चाहिए जो कि कहा जाता है, जितनी ज़रूरत है मिट्टी में जो है कि केमिकल की खाद और इस तरह के
0: पानी
1: तत्वों
0: की,
1: की,
0: बिल्कुल
1: उतना ही दीजिए, और पानी भी उतना ही दीजिए कि वो जड़ों तक जाए।
0: बिल्कुल। और देखिए जो हमारी ये है प्रति बूंद अधिक लाभ या अधिक फसल, तो ये बहुत बढ़िया योजना है हमारे प्रधानमंत्री जी की। इस योजना का हमारे किसान भाई अगर लाभ उठाएं तो उतना ही पानी हमारी फसलों को लगेगा जितनी उसको ज़रूरत है, ड्रोन के माध्यम से या टपक
1: स्प्रिंकल
0: सिंचाई के
1: है, टपक
0: माध्यम। जी
1: विधि है
0: बिल्कुल
1: ना, स्प्रिंकल विधि है, तो इस तरह से इसमें जो है कि कम से कम पानी की खपत होती है और अधिक से अधिक सिंचाई होती है। और बड़ी खासियत इसकी यह है वंदना बहन कि इसमें एक तो 40% तक करीब करीब बचत हो जाती है पानी की, दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सरकार सहायता देती है।
0: बिल्कुल सब्सिडी देती है, और इस योजना के तहत जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको सूक्ष्म सिंचाई यंत्र लगाने के लिए 55% तक और अन्य किसानों को 45% तक अनुदान राशि दी
1: ये
0: जाती
1: बड़ी
0: है।
1: बात है, बड़ी
0: जी
1: मदद है।
0: बिल्कुल, तो इसलिए जल की बचत करें और अपने खेतों को हरा भरा बनाएं। और आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही अच्छी जानकारी हम अपने भाइयों को दिलवाते हैं, जलवायु स्मार्ट खेती, बदलती जलवायु के अनुरूप खेती को कैसे बनाएं सक्षम। डॉक्टर प्रशंसा वर्मा से बातचीत कर रही हैं कमलेश मुदकर, तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: हमारे किसान भाई और बहन जब भी कृषि के बारे में बात करते हैं तो सभी आपस में यही बात करते हैं कि इस समय उन्होंने अपने खेतों में क्या लगाया हुआ है। और कुछ भाई जब एक दूसरे को कहते हैं वाह भाई तू तो बड़ा स्मार्ट है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन किसान भाइयों ने जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाया है। ये क्या है इसके बारे में हम इस बातचीत में जानेंगे। आज की जो बातचीत का विषय है वो रखा है जलवायु स्मार्ट कृषि, बदलती जलवायु के अनुरूप कैसे बनाएं सक्षम। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रशंसा वर्मा को, जो रिसर्च स्कॉलर हैं

0: राष्ट्रीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में डॉक्टर प्रशंसा वर्मा हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: थैंक यू मैम।
0: जब हम बात करते हैं जलवायु की या जलवायु परिवर्तन की, तो जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं वो कैसे समझे कि जलवायु और जलवायु परिवर्तन में क्या फर्क है?
1: हम सब पिछले कुछ वर्षों से महसूस कर रहे हैं कि मौसम पहले जैसा नहीं रहा। कभी समय पे बहुत अधिक गर्मी पड़ जाती है, कभी अचानक तेज वर्षा हो जाती है, कभी लंबे समय तक वर्षा नहीं होती और कभी फसल के पकने के समय बेमौसम वर्षा हो जाती है। यही बदलता हुआ मौसम और लंबे समय में होने वाले परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन का सबसे सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ता है, क्योंकि खेती प्राकृतिक परिस्थितियों पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
0: आपने अभी बात की कि जब हमारा जलवायु परिवर्तन होता है या तापमान बदलता है तो उसका सीधा प्रभाव हमारी कृषि पर पड़ता है, तो ये प्रभाव हमारी कृषि पर कैसे पड़ता है, ये भी हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे।
1: जी, तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, लंबे समय तक गर्मी होना, सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना और कभी कभी ओलावृष्टि जैसी घटनाएं फसल की वृद्धि और उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। इसी के साथ ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा भी बढ़ रही है। कुछ परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा पौधों की वृद्धि को बढ़ा सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर परिस्थिति में उत्पादन बढ़ेगा। जब अधिक तापमान, अनियमित वर्षा और बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ प्रभाव डालते हैं तो फसल की प्रक्रियाएं अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हम सोयाबीन को ही ले लें। मध्य भारत में, विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सोयाबीन एक महत्वपूर्ण फसल है।
0: जी।
1: यदि फूल आने और फली बनने की अवस्था के आसपास तापमान बढ़ जाता है तो फसल की वृद्धि और दाना बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार बुवाई का समय बदलने से पौधे की ऊंचाई, फैलाव और दाने के वजन पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
0: जो हमारे किसान भाई उत्पादन लेना चाहते हैं, क्या उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है?
1: जी, इसलिए आजकल आवश्यकता केवल अधिक उत्पादन की नहीं है, बल्कि ऐसी कृषि पद्धति की है जो बदलती जलवायु के बीच भी उत्पादन बनाए रख सकते हैं, जोखिम कम कर सके और पानी और मिट्टी जैसे संसाधनों का भी सही उपयोग कर सके।
0: जी, हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उन्हें ये तो पता चल गया कि जलवायु स्मार्ट कृषि किसको कहते हैं, लेकिन जब जलवायु स्मार्ट कृषि की बात आती है और हम ये भी बात करते हैं कि हमें फसलें भी उतनी ही चाहिए, उसी मात्रा में हमें उत्पादन भी चाहिए, तो क्या हमें जो किस्में हैं वो हमें चेंज करनी होंगी डॉक्टर साहब?
1: जलवायु स्मार्ट कृषि के मुख्य तीन उद्देश्य हैं। पहला है उत्पादन और उत्पादकता को बनाए रखना या बढ़ाना। दूसरा है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति खेती को अधिक सक्षम और सहनशील बनाना। और तीसरा है कृषि से होने वाली हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करना।
0: जी,
1: इसके लिए हम कुछ सरल और व्यवहारिक उपाय अपना सकते हैं।
0: जी,
1: जैसे कि पहला उपाय है, बुवाई के समय में हम बदलाव कर सकते हैं। बदलती जलवायु में बुवाई का समय सही बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यदि मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर बुवाई का समय थोड़ा आगे या पीछे किया जा सके तो फसल को अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक वर्षा जैसी परिस्थितियों से बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि गेहूं में स्थानीय परिस्थितियों और कृषि सलाह के अनुसार समय पर या कुछ परिस्थितियों में अपेक्षित जल्दी बुवाई करने से फसल को पकने के समय आने वाली अधिक गर्मी से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार धान में भी स्थानीय मौसम और पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखकर रोपाई का समय निर्धारित किया जा सकता है।
0: जी, ये तो आपने हमारे जो श्रोता है उनको बहुत ही अच्छी बात बताई, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें समय समय पर अलग अलग जलवायु परिवर्तन की स्थितियां देखनी पड़ती हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारे किसान भाई हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: हम उपयुक्त और सहनशील किस्मों का चयन भी कर सकते हैं।
0: जी।
1: जैसे कि किसान ऐसी किस्मों का चयन करें जो स्थानीय जलवायु और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अच्छा प्रदर्शन कर सकें, जैसे सूखा, अधिक तापमान या कम अवधि जैसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त किस्मों का चयन जलवायु जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इसके केवल अधिक उत्पादन देने वाली किस्म ही नहीं, बल्कि बदलते मौसम में स्थिर उत्पादन देने वाली किस्म भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हरियाणा के किसान भाई गेहूं की किस्में जैसे कि HD 3046, WH 1270 का प्रयोग कर सकते हैं, और मध्य भारत के किसान भाई पूसा तेजस या पूसा अनमोल जैसी किस्मों को भी उगा सकते हैं।
0: जब हम बदलती जलवायु की बात करते हैं, तो जब हम किसान भाइयों को सलाह दें कि वो अपना जो खेत है उसकी कैसे पहले तैयारी करें, या उनकी तैयारी करने से पहले उनको और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: स्वास्थ्य मिट्टी ही स्वस्थ फसल का आधार है। मिट्टी में पर्याप्त जैविक पदार्थ बनाए रखना, संतुलित उर्वरक का उपयोग करना, अनावश्यक जुताई को कम करना और फसल अवशेषों को जलाने से बचाना बहुत जरूरी है। फसल अवशेषों को खेत में उचित तरीके से मिलाने या उनका उपयोग करने से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने और नमी संरक्षण में सहायता मिलती है।

0: हमें ये समझना होगा कि मिट्टी केवल फसल उगाने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी कृषि व्यवस्था की नींव है।
1: अगर हमने अपने सहनशील किस्में लगाई हैं लेकिन उसके बाद भी जलवायु परिवर्तन ने उनके अनुरूप अगर उत्पादन नहीं दिया है, तो आगे के लिए हम अपने किसानों को कैसे सचेत कर सकते हैं?
0: जी, इसका भी कुछ उपाय हो सकते हैं, जैसे पानी का हम बेहतर प्रबंधन करें। हमारे लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों में से एक है। जहाँ संभव हो वहाँ हम बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, खेत में मेड़बंदी, वर्षा जल का संग्रहण और खेत में नमी बनाए रखने के उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि बूंद बूंद सिंचाई से लगभग 3 से 70% पानी की बचत होती है और फव्वारा सिंचाई से लगभग 30 से 50% पानी की बचत होती है। अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई के लिए खारा पानी उपलब्ध है तो टपकन या बूंद बूंद सिंचाई सबसे उत्तम और प्रभावी माना जा सकता है। और अगर उनकी भूमि असमतल होती है तो सबसे उपयुक्त सिंचाई फव्वारा सिंचाई को मानते हैं।
1: जी, हमारे किसान भाई बहुत ही स्मार्ट होते चले जाएंगे यदि वो जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाएंगे। डॉक्टर साहब, कि जैसे कि हमने जो किस्में लगाई हैं और हर क्षेत्र की अलग अलग किस्में होती हैं, आज मैंने जो किस्म लगाई है, क्या उसका बीज बनाकर अगले साल मैं उसी किस्म को लूं या दोबारा से मुझे उन किस्मों को बाहर से लेना होगा?
0: हम दोनों ही तरीके से चल सकते हैं। और फसल की विविधीकरण, यदि किसान केवल एक ही फसल पर निर्भर रहता है तो किसी एक मौसम की विपरीत परिस्थितियों से पूरा उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसीलिए फसल विविधीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। दलहनी फसल, तिलहनी फसल और अन्य उपयुक्त फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता और कृषि जोखिम दोनों को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। उदाहरण के लिए गेहूं के साथ चना जैसी फसल को फसल चक्र में शामिल करना किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है।
1: जब कृषि अनुसंधान होते हैं तब आप भी ये लोग सोचकर अनुसंधान करते हैं कि जो खेतों में हमारे किसान हैं उनको इन चीजों से क्या फायदा होगा, तो कुछ ऐसी और स्मार्ट कृषि के लिए आप लोगों ने कुछ और चयन किया है तो वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: जैसे कि आजकल मौसम की जानकारी का उपयोग भी किसान कर सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम सलाह के आधार पर किसान बुवाई, सिंचाई, उर्वरक प्रयोग तथा कीट और रोग प्रबंधन से जुड़े निर्णय बेहतर तरीके से ले सकता है। मेघदूत, किसान सुविधा और किसान कॉल सेंटर जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-1800-1551। ये सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक जानकारी प्रोवाइड कर सकता है। किसान भाई केवल मौसम देखकर ही निर्णय ना लें, बल्कि अपने क्षेत्र के लिए जारी की गई कृषि फसल सलाह को भी ध्यान से देखें।
1: बदलती जलवायु के अनुरूप जब हम सक्षम बनने का प्रयास करते हैं तो ऐसे और कौन कौन से उपाय आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
0: आज वैज्ञानिक यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि भविष्य में तापमान, वर्षा और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बदलाव होता है तो हमारी फसलें किस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगी। इसके लिए कुछ मॉडल्स यूज किया जाता है, जैसे कि डी सेट हो, क्रॉप ग्रो और एक्वाग्राफ जैसे फसल अनुकरण मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। इन मॉडलों में बेसिकली मिट्टी, मौसम, फसल की किस्म और कृषि प्रबंधन से संबंधित जानकारी दी जाती है। इसके बाद मॉडल यह अनुमान लगाने में सहायता करता है कि अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में फसल की वृद्धि, उत्पादन और पानी की उत्पादकता कैसे हो सकती है। इसके सबसे बड़ा लाभ ये है कि वैज्ञानिक अलग अलग जलवायु परिस्थितियों और कृषि प्रबंधन विकल्पों का अध्ययन बिना हर परिस्थिति में नया प्रयोग किए कर सकते हैं। इससे समय, श्रम और संसाधनों की बचत होती है और भविष्य की कृषि रणनीतियां तैयार करने में सहायता मिलती है।
1: कभी भी मौसम बदलता है और उस मौसम के बदलाव के अनुरूप हमारे किसान भाई कार्य करते हैं तो हरेक के मन में एक डर भी रहता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि आप अनुसंधान करते हैं तो उन अनुसंधान के बल पर उनका वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप हमारे किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं यही बोलना चाहूंगी, जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए किसान अकेले जिम्मेदार नहीं है।
1: जी,
0: कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र, मौसम विभाग और कृषि विस्तार संस्था मिलकर किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों के लिए फसल बीमा, सिंचाई सुविधाएं, मिट्टी की जांच और मौसम आधारित कृषि सलाह जैसी व्यवस्थाएं भी जोखिम कम करने में सहायता करती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या किसी भी वजह से फसल खराब होती है तो किसानों को कुछ प्रतिशत प्रीमियम मिलता है। अगर वह फसल खरीफ सीजन की है तो उसके लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% तक की प्रीमियम प्रोवाइड की जाती है किसानों को।
1: जी,
0: लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी खेती को बदलते मौसम के अनुसार बदलने की आवश्यकता है। सही समय पर बुवाई करें, उपयुक्त किस्मों का चयन करें, पानी का कुशल उपयोग करें, फसल विविधीकरण अपनाएं, मिट्टी की

0: स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मौसम की वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर कृषि निर्णय लें।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान मित्रों को इतनी सटीक और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप जानकारी सुन रहे थे, जलवायु स्मार्ट खेती, बदलती जलवायु के अनुरूप खेती को कैसे बनाएं सक्षम। डॉक्टर प्रशंसा वर्मा, जो कि वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली, और उनसे बातचीत कर रही थी कमलेश मुदगल।
3: तो ये तो थी जानकारी, और अपने भाइयों का करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं सूबे सिंह कपासिया की आवाज़ में ये उपदेश।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे उपदेश कुसुम गौर की आवाज में। और देखिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अपनी चुनिंदा मंडियों के कुछ भाव। बाजरा का जो इस वक्त रेट चल रहा है वो है 2205 रुपये प्रति कुंटल, और धान का जो रेट चल रहा है वो है 4090 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। ये हरियाणा की मंडियों के कुछ भाव हैं। और गेहूं का इस वक्त जो भाव चल रहा है वो 2425 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है, और प्याज का भाव है कि 6500 गुड़गांव में, और रेवड़ी में है 5500। सेब का भाव है 15000, और रोहतक में है 8000 रुपये प्रति कुंटल, और अनार का भाव है 12000, और हंसी में और गुड़गांव में है 7500 रुपये प्रति कुंटल। और कुछ और हमारे पास भाव आए हुए हैं, रेट हैं हमारे पास। सरसों का जो भाव है हिसार की मंडी में है 7200 रुपये से 7800 रुपये प्रति कुंटल तक, और कपास का जो भाव है वो है 8931 रुपये से 8975 रुपये प्रति कुंटल तक। तो ये तो थे हरियाणा की मंडियों के कुछ चुनिंदा चीज़ों के रेट।
1: जी
0: और
1: वंदना बहन, और एक बार फिर से अपने हम बहनों भाइयों का मनोरंजन कराते हैं और सुनवाते हैं जगदीश नागर की आवाज़ में ये
0: उपदेश
1: उपदेश।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जगदीश नागर की आवाज में ये उपदेश, और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता हैं तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत किया वंदना रानी और शाहिद परवेज ने। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गज़ल और कव्वाली का। और इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं जगजीत सिंह की गाई इस गज़ल से।
1: हुजूर आपका भी

0: pétalo.
1: और जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ इतना ही कहना चाहूंगी कि खुद को इतना मजबूत बना लो हर मुश्किल

का हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। और लीजिए अब सुनते हैं चंदन दास के स्वर में ये गजल।

0: और इन्हीं चंद लाइनों के साथ कार्यक्रम को मैं विराम दूंगी कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो दीजिए इजाज़त कुसुम को अपने साथ, यहीं तक था आपके आपका और हमारा साथ। तो अब वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचार का, क्योंकि हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:45 लगभग हो ही चुके हैं। लीजिए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: टीकू जी, 100 ग्राम पेड़े देना।
2: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
1: अरे भाई, आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
3: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
1: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
2: दे रे भाई,
4: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। दिल्ली उच्च न्यायालय में 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी

0: कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन कार्यक्रम में सम्मानित करेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज द्विवेदी ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के चेयरमैन पद की शपथ ली और दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता, अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को न्यायाधीश तथा संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अपर न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली की जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। शपथ ग्रहण समारोह उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के बाद 19 सितंबर को इन 7 की नियुक्ति की घोषणा की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज द्विवेदी ने आज नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC के चेयरमैन पद की शपथ ली। परिषद की बैठक के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री और परिषद की बैठक के पीठासीन अधिकारी प्रवेश साहिब सिंह ने शपथ दिलाई। नगरपालिका ने कहा कि ये अवसर NDMC के नेतृत्व में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इसमें कुशल नागरिक सेवाओं, नागरिक केंद्रित प्रशासन और नई दिल्ली के विकास पर निरंतर जोर दिया जाएगा। दिल्ली भाजपा ने आज एक प्रदेश संयोजक और 3 प्रदेश सह संयोजक के नामों की घोषणा की है। पार्टी के अनुसार महेंद्र नागपाल राजधानी में पार्टी के संयोजक होंगे। इसके साथ ही मीरा अग्रवाल, कैलाश सांकला और रोशन कंसल को प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज जनता दर्शन में लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि संवाद के दौरान उन्होंने नागरिकों की बात को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि जनता की सेवा और उनकी समस्याओं का समाधान ही सरकार का संकल्प है। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत इस बुधवार राजधानी के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन नामक कार्यक्रम में सम्मानित करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बच्चों और महिलाओं और परिवारों तक सरकार की सेवाएं पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: Which recognize and accept the Indian pharmacopoeia.
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली पीएम

0: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्लीवासी इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण solar.delhi.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: पोर्टल पर सोलर के लिए आवेदन आज से शुरू हो गया है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उपभोक्ता पोर्टल पर अपना सीए नंबर दर्ज कर आवश्यक जानकारी भरेंगे, अपनी सहमति देंगे और इसके बाद संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि उपभोक्ता आसानी से पंजीकरण कर सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें 3 किलोवाट तक का सोलर रूफटॉप सरकार बिना किसी लागत के लगा कर देगी। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट से अधिक के सोलर रूफटॉप पर केंद्र सरकार 78,000 रुपए और दिल्ली सरकार 78,000 रुपए की सहायता देगी।
2: दिल्ली के उपभोक्ता 400 यूनिट के ऊपर की कैटेगरी में आते हैं और 3 किलोवाट से ऊपर का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार पूरी सहायता देगी, जिसमें 78,000 जो रुपीज है वो केंद्र सरकार सब्सिडी देती है और हमने भी केंद्र सरकार जितना पैसा दे रही है उतना दिल्ली राज्य की ओर से भी 78,000 हम देंगे।
1: दिल्ली सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक दिल्ली के 2,30,000 घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्लीवासी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे एक और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर परिवारों को बिजली के खर्च में बचत करने का अवसर मिलेगा। रिशु जायसवाल के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
0: दिल्ली परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान श्री सिंह ने कहा कि बस डिपो और चार्जिंग ढांचा विकसित किया जा रहा है ताकि नई इलेक्ट्रिक बसों को बिना किसी देरी के सुचारू रूप से राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतारा जा सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य साफ सुथरी और ग्रीन क्लीन दिल्ली का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजधानी में 40 बस डिपो से लगभग 5,088 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इसके अलावा 3 और नए बस डिपो में इलेक्ट्रिसिटी चार्जर लगाने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार राजधानी के दौराला और झुलझुली में भी 2 नए बस डिपो बना रही है, जिनकी क्षमता 250 और 500 बसों की है। इससे दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को राहत मिलेगी और वे दिल्ली की मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने रेलवे स्टेशनों, कार्यस्थलों और रेलवे आवासीय कॉलोनियों में जलापूर्ति प्रणालियों के व्यापक उन्नयन के लिए एक विशेष अभियान प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत जल भंडारण और फिल्ट्रेशन टैंकों की व्यापक सफाई तथा अवसंरचना उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने कहा कि सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA नई दिल्ली में गुरुवार से शनिवार तक नदी उत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगी। इस वर्ष का उत्सव यमुना नदी पर केंद्रित है। इसमें यमुना को न केवल जीवन देने वाली नदी के रूप में बल्कि यादों, संस्कृति, इतिहास और कल्पना की एक जीवंत धारा के रूप में भी देखा जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की। भटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
3: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है। हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में। कब जुल्म किसी का चलता है, ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ। प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: प्रादेशिक

0: समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम MCD ने आज एक विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत सभी 12 जोन में 44 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जिन इलाकों में आज इस अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई उसमें गांधीनगर, मंडावली, फजलपुर, न्यू अशोकनगर, ईस्ट विनोद नगर, नारायणा, न्यू मोतीनगर, इंद्रपुरी और शालीमार बाग जैसे इलाके शामिल हैं। निगम ने कहा कि अनधिकृत निर्माण और भवन मानदंडों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है।
1: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई EPFO वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप पर 9289094044 पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले हिमांशु ढिल्लो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले रुद्रांश बालासाहेब पाटिल को भी बधाई दी है। श्री मोदी ने पूरी प्रतियोगिता के दौरान उनके फोकस और अनुशासन की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एशियन गेम्स 2026 में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश बालासाहेब पाटिल को और पार्थ राकेश माने और हिमांशु ढिल्लो को बधाई दी है। उन्होंने भविष्य में इन खिलाड़ियों के लिए और भी जीत की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री ने सुचिका तारियाल को महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर भी बधाई दी है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि MMA में ये भारत के लिए पहला एशियन गेम्स पदक है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय में 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन कार्यक्रम में सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनीष द्विवेदी ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद की शपथ ली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
5: हर लेन देन अब
6: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर।
7: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
8: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
7: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
8: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
7: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
8: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
6: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मालिका में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हूँ मैं आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी है बेहद खूबसूरत गीत के साथ, अलका याग्निक की आवाज़। और इस गीत को लिखा नुसरत पत्र ने और आदेश श्रीवास्तव ने इस गीत को संगीत दिया। आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से, और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर आपको बता दें कि मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना। और

रहेंगे इस कार्यक्रम में आपके साथ कुछ मिनटों तक, ढेर सारी खूबसूरत नगमों का आनंद लेंगे। इंतजार भी कितना खूबसूरत होता है ना। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में हम इंतजार की बातें कुछ करेंगे। हालांकि इंतजार का नाम सुनते ही ना हमारे दिल में कुछ दुख दुख सी होने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है कि इंतजार किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी का इंतजार, किसी व्यक्ति का इंतजार हो या फिर आपकी फेवरेट डिश का, किसी भी चीज़ का इंतजार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।

0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की खूबसूरत आवाज़ के साथ। फिल्म रही आदमी खिलौना है, नदीम श्रवण ने इस गीत को संगीत दिया। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम को आप पसंद कर रहे होंगे। गीत मालिका से आप जुड़े हुए हैं, मैं हूँ आपके साथ चेतना।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कि इंतज़ार, वाकई में इंतज़ार शब्द जो है ना कहीं तकलीफ़ देता है सुनने में भी। लेकिन किसी चीज़ का, किसी इंसान का हम इंतज़ार करते ही क्यों हैं? क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि शायद वो आज मिल जाएगा। इंतज़ार भी खूबसूरत लगने लगता है जब उम्मीद ये रहती है कि हाँ, ये उम्मीद पूरी होगी। और किसी ने खूब ही तो लिखा है, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। और इंतज़ार सिर्फ किसी इंसान का नहीं होता है जनाब, कभी कभी इंतज़ार होता है एक अच्छी खबर का, एक नई शुरुआत का, या फिर खुद से मिलने का।

जी हाँ, श्रोता अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज़ के साथ ये जख्म फिल्म से गीत रहा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रेस चैनल से और कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत मालिका हम सभी सुन रहे हैं और समय रात्रि के 8:19 हो चुके हैं। इंतज़ार की घड़ियां भले ही लंबी हों पर दीदार का मज़ा तो कुछ और ही होता है। जी हाँ, इंतज़ार की घड़ियां भले ही बहुत लंबी हों लेकिन इंतज़ार तब मुकम्मल हो जाता है जब हम अपने पसंदीदा शख्स के सामने होते हैं या फिर किसी भी वस्तु चीज़ के, जो तड़प कर मिले इस दिल को तो उस प्यार का मज़ा ना कुछ और ही होता है। इंतज़ार भी खूबसूरत होता है, कभी कभी बहुत ख़राब लगता है लेकिन इंतज़ार खूबसूरत होता है।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना और फिल्म थी ये जुबेदा। अब जुबेदा फिल्म से गीत को सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में, और इस खूबसूरत गीत को संगीत दिया था AR रहमान ने। ढलती शाम का मंजर भी कितना सुहाना होता है ना, जब इंतज़ार में किसी की यादों का कोई ठिकाना सा होता है। वक्त ठहर जाता है उस लम्हे में आकर जहाँ दिल को किसी के लौट के आने का गुमा होता है। हम उसकी यादों में इतना खो जाते हैं कि बस लगता है ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो इंतज़ार का।

कुमार सानू की आवाज़ और साथ में अलका याग्निक, फिल्म रंग से अभी आपने गीत को सुना। श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और मीडियम वेव 366.3 मीटर हैं। जी हाँ, इस फ्रिक्वेंसी के थ्रू आप हमसे जुड़ते हैं और सुनते हैं मनोरंजक कार्यक्रम। समय आपको बता दें कि स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 8:30 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। श्रोताओ, इंतज़ार की हम बात कर रहे थे तो इंतज़ार तो भाई तब हुआ करता था जब हम गर्मी के मौसम में छुट्टियों का इंतज़ार करते थे। इंतज़ार उसे कहते हैं जब कागज़ की नाव बनाकर हम बारिश के आने का इंतज़ार करते थे। और इंतज़ार तो वो होता है जब हम घंटों खड़े होकर अपने पसंदीदा शख्स की एक झलक पाने के लिए खड़े रहते थे। इंतज़ार हमें सब्र सिखाता है। ये बताता है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती। इंतज़ार हमें बताता है कि

जी हाँ, दिल का रिश्ता, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म दिल का रिश्ता से ही अभी आपने गीत सुना। बेहद खूबसूरत, और वाकई में दिल के रिश्ते कुछ अलग ही होते हैं। लेकिन समय जो है ना, जो घड़ी की सुइयां हैं वो तेज़ी से भाग रही हैं मेरे सामने, और इन कह रही हैं कि भाई अब इस कार्यक्रम से मुझे जाना होगा। लेकिन इंतज़ार आपका थोड़ा सा और रहेगा, क्योंकि 11:10 पर मिलूंगी आपसे लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत। और आप भी अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे कोई इंसान है या फिर खुशी या फिर कोई एक नया मौका, तो याद रखिए हर इंतज़ार का एक अंत ज़रूर होता है। फिलहाल आपको इस आखिरी गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ, कुमार सानू की आवाज़ और अलका याग्निक के साथ। अपना ख्याल रखिए और मिलेंगे आपसे 11:10 पर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:44 और पूरे 50 सेकंड हुए हैं। ठीक है, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी

0: दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: Into concrete economic outcome.
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIR News Hindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से

0: वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
1: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की

0: समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India-New Zealand free trade agreement to come into force from 20th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says it will open new employment opportunities in MSMEs and benefit farmers. India and Canada agree to fast-track negotiations for comprehensive economic partnership agreement. Next round of talks to begin on 5th of next month. Defence Ministry signs contract worth 586 crore rupees with a Pune-based private company to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks. NHAI releases new guidelines to boost road safety and efficiency across national highways. Vladimir Putin's United Russia Party retains majority in parliament. And at Asian Games in Japan, India wins 3 medals in shooting at Aichi Nagoya. Badminton men's team reaches quarterfinals, beating Bangladesh. And now the news in detail. India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce

0: मंदी और पायदारी को मजीद मुस्तहकम करेगी। इससे निज़ाम की मुल्की इख्तिरात को पैदावार और शमूलियत में तब्दील करने की असर पजीरी का इजहार होता है। ये माहिदा हुकूमत के विकसित भारत 2047 के विजन से वाबस्ता है और दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता की हुसूलियाबी की जानिब एक काबिले जिक्र संगे मील है। साथ ही ये एक मुजाहिमत खुदकफील और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय दिफाई सनत की तश्कील की जानिब भी एक अहम संगे मील है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए कौनैन हैदर।
1: भारत की कौमी शाहराओं की अथॉरिटी NHAI ने इंतहाई तेज़ रफ्तार रसाई वाली कंट्रोल्ड कौमी शाहराओं की मनसूबाबंदी और डिज़ाइनिंग के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं की वजारत ने बताया कि इन रहनुमा खतूत का इतलाक़ आने वाली तमाम 4 और 6 लेन वाली ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इंतहाई तेज़ रफ्तार रसाई वाली कंट्रोल्ड कौमी शाहराओं पर होगा। इन रहनुमा खतूत के तहत इंतहाई तेज़ रफ्तार कौमी शाहराओं की राहदारी की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की तैयारी के लिए मेयार में यकसानियत लाने की बात कही गई है। इनसे कौमी शाहरा के पूरे नेटवर्क में तकनीकी मेयार के एतबार से ज़्यादा इस्तकलाल, सड़क तहफ्फुज में मजबूती और ऑपरेशनल सलाहियत में बेहतरी भी आएगी। वजारत ने कहा कि ये रहनुमा खतूत हुकूमत के तवील मुद्दती कलीदी लाहे अमल से मुताबिकत रखते हैं, जिसके तहत विकसित भारत 2047 के तहत रसाई को कंट्रोल करने वाले इंतहाई तेज़ रफ्तार 50,000 किलोमीटर राहदारी की तैयारी की बात कही गई है, जिससे कनेक्टिविटी को फरोग मिलेगा और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वो दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के भाई थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि मुआशरे की खिदमत अंजाम देने के लिए उनकी कोशिशों को आने वाली नस्लें हमेशा सराहेंगी। वज़ीर आज़म ने दुबई के शाही ख़ानदान और आवाम से ताज़ियत का भी इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि भारत दुबई के शाही खानदान और आवाम के इस गम में शरीक है। यह आकाशवाणी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफ़र जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अनथक अज़्म से इबारत है, जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इसी नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के ज़रिए यह अज़्म लोगों की ज़िंदगियों में तब्दील ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खुसूसी सीरीज के तहत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के जरिए लाई गई तब्दीली का जायजा पेश किया जा रहा है।
2: डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा मुल्कों के हुक्मरानी लेन देन और खिदमात की फराहमी के तरीक़ेकार को नई शक्ल दे रहा है। भारत डिजिटल सिस्टम के सबसे बड़े इस्तेमाल करने वाले से लेकर आबादी के तनासुब के मुताबिक डिजिटल आर्किटेक्चर के मेमार के तौर पर उभरा है। भारत ने मुश्तरक डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 सतहें तश्कील दी हैं और हर सतह को दूसरों के जरिए तामीर के लिए खुला रखा है। इसके तहत पहली सतह आधार है, जो काबिल तस्दीक शनाख्त फराहम करता है। वहीं UPI रकम की 2 बैंक खातों के दरमियान फौरी मुंतकली को मुमकिन बनाता है और अदायगी करने वाले शख्स पर किसी तरह का चार्ज आयद नहीं होता। इसी तरह अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क शहरी को अपने मालियाती रिकॉर्ड अपनी मर्जी से कर्ज देने वाले या बीमा करने वाले के साथ साझा करने की भी इजाज़त देता है। मुंबई में इस महीने मुनक़द हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने UPI के 10 साल काबिल ज़िक्र सफ़र और उसकी बढ़ती आलमी पहुँच को नुमाया किया था। डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के साथ भारत का सफ़र डिजिटल दौर में तरक्की और हुक्मरानी की जानिब बड़े पैमाने पर मुंतकली को ज़ाहिर करता है। जो कभी मालियाती शमूलियत और पहचान तक रसाई के लिए शुरू हुआ था, वो आज जामे और इंटर ऑपरेबल तरीक़ाकार बन गया है, जो इक्तसादी सरगर्मी, अवामी खिदमत की फराहमी और इदारा जाती सलाहियत को मुमकिन बना रहा है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए ज़मीर रज़वी।
1: روس کے مرکزی انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ایوان زیریں 90 اسٹیٹ دوما کے لیے ہوئے انتخابات میں برسر اقتدار یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے 57.83% ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ انتخابی نتائج صدر ولادیمیر پوتن کو اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ماسکو میں آج اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے مرکزی

मुर्मू अपने 3 रोजा दौरे पर आज गुजरात पहुंच गई हैं। अपने दौरे में सदर जमहूरिया केवड़िया के एकता नगर और वडोदरा में अहम तकरीबात में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया कल शाम केवड़िया के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म इनामात अता करेंगी। एकता नगर इन बावकार इनामात की पहली मरतबा मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इत्तला तो नशरियात की वजारत ने भारतीय फिल्मों की गुनागुनियत को जश्न मनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे के तहत मुल्क के आला तरीन फिल्म इनामात अता किए जाने की तकरीब को कौमी राजधानी से आगे ले जाते हुए दूसरे मकाम पर मुनक़द करने का तारीखी फैसला लिया है। भारत ने जापान के एची नागोया में जारी एशियाई खेलों में निशानेबाजी में 3 तमगे जीते हैं। मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल इनफरादी मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने चांदी का तमगा जबकि रुद्राक्ष पाटिल ने कांसे का तमगा जीता। भारत ने मर्दों के टीम मुकाबले में भी चांदी का तमगा जीता है। कल एलाविनिल वलारिवन ने ख्वातीन के इनफरादी 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया था। भारत ने ख्वातीन के टीम मुकाबले में भी चांदी का तमगा जीता है। इस तरह निशानेबाजी में 4 चांदी के और 1 कांसे के तमगे के साथ कुल 5 तमगे जीते हैं। सुचिका तरियल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में तमगा जीता जो भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करने पर हिमांशु ढिल्लन को मुबारकबाद दी है। भारत ने आज जापान के इचिनोमिया सिटी म्यूनिसिपल जिम्नेजियम में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त देकर मर्दों के बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में अपना मकाम बना लिया है। लक्ष्य सेन ने अयमिन एमन इब्न को 21-4 21-12 से, आयुष शेट्टी ने गौरव सिंघा को 21-4 21-13 से और किदांबी श्रीकांत ने जुमारुल अमन को 21-15 और 21-9 से शिकस्त दी। आखिर में बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड आज़ाद तजारती माहिदा अगले माह की 20 तारीख से नाफिज होगा। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इससे MSMEs में रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे और किसानों को फ़ायदा होगा। भारत और कनाडा ने जामे इक्तसादी शराकत दारी माहिदे के लिए तेज़ी के साथ मुज़ाकरात करने से इत्तेफ़ाक़ किया है। बातचीत का अगला दौर 5 अक्टूबर को शुरू होगा। वजारत दिफा ने पुणे में कायम एक प्राइवेट कंपनी के साथ एक माहिदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सिलियरी पावर यूनिट APUs हासिल करेगा। NHAI ने तमाम कौमी शाहराओं के लिए सड़क तहफ़ और सलाहियत को फ़रोग देने की गरज से नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: ये जरा सी खरोच पर जख्म करते हैं। मैंने तो सुना था एयरफोर्स के लोग बहुत बहादुर होते हैं।
1: तब तो आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है और एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का साथ बन सकती है।
0: अब बैठिए, मैं दवा लेकर आती हूँ।
1: कल रात मैंने एक सपना देखा था।
0: सपना? कैसे सपना?
1: चारों तरफ आग ही आग, धुएं के बादल, मशीन गनों की धार धार, टैंकों की घरघराहट, भयानक जंग हो रही। मैं भागकर अपने प्लेन में बैठ जाता हूँ, प्लेन स्टार्ट करता हूँ, जूम आसमान में 300, 400, 700 की रफ्तार होते ही नीचे दुश्मनों का एयरपोर्ट नजर आता है। धड़म धड़म धड़म, 3 बॉम्ब जाके निशाने पे गिरते हैं, एयरपोर्ट साफ।
0: उसके बाद
1: एक धड़ाम से आवाज आती है, मेरा प्लेन हिल उठता है। पीछे देखता हूँ तो आधा प्लेन गायब, नीचे देखता हूँ तो होश गायब। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, आंखें बंद करके धड़ाम से नीचे कूद पड़ता हूँ और जब आंख खुलती है अपने आप को एक अनजाने से शहर में एक अनजाने घर के सामने पाता हूँ। दरवाजा खुलता, एक खूबसूरत सी लड़की मुझ पर एक बाल्टी ठंडे पानी की डाल देती है, आंख खुल जाती।
0: शुक्र है आंख खुली तो सही, मैं तो डर रही थी कि आपका सपना शायद खत्म ही नहीं होगा।
1: खत्म? अब तो शुरू हुआ है मेरा सपना।
0: अरुण बाबू, मैंने आपके हाथ में दवा लगाकर पट्टी बांध दी है, अब आप।
1: पट्टी? आपने गलत हाथ में बांध दी।
0: गलत?
1: जानती हूँ ये क्या हो गया वंदना।
0: जी,
1: तुम मेरे सपने में हो गई थी। सच होगा मेरा सपना?
0: मुझे क्या मालूम।
1: तो फिर किसे मालूम?
0: बाबा को।

0: Una. Tu jawab do. ऐसे नहीं, जोर से
1: जोर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीति साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैच्यू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने आई स्टेम पोर्टल को लेकर राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों की पहली बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य राज्यों की भागीदारी बढ़ाने और सार्वजनिक धन से तैयार वैज्ञानिक

0: Japan yesterday in the men's 10-meter air rifle individual event. Himanshu Dhillon won the silver medal, while Rudraksh Patil secured the bronze. India also bagged a silver medal in the men's team event of the same competition. The trio of Rudraksh, Balasaheb Patil, Himanshu Dhillon and Parth Rakesh Mane came second in 10-meter air rifle team event. In mixed martial arts, Suchika Tarial has become the first athlete from the country to win a medal, securing bronze in the 60 kg category. In the medal tally, India is currently in 12th place with a total of 6 medals, including 4 silver and 2 bronze. Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi have congratulated the medal-winning team. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7। 1:10 हो चुके हैं, समय है कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती, और वाकई में गीत सुनहरे वही गीत जो कल भी तरोताज़ा, आज भी तरोताज़ा और कल भी तरोताज़ा ही रहेगा। जी हाँ, उन्हीं गीतों के बारे में, उन्हीं गीतों को आज सुनेंगे और महसूस करेंगे कि क्या कुछ ख़ास है इसमें,

और अगर गीतों का सिलसिला ये चला जहाँ प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, वहाँ पर कुछ गीत ऐसे भी बने हैं जिन्हें उनके अपने मोहब्बत के पहनावे, उनके श्रृंगार, उनकी बातों को लेकर कुछ अलग सा कहा जाता है। आपको पता है, जब पुराने गीतों की बात चलती है तो आप समझ ही नहीं सकते कि कौन सा गीत किस मूड का है, क्योंकि जब आप उसे सुनते हो, जब आप उसे सुनने लगते हैं, तब आपको समझ में आता है, अच्छा, इस समय के हिसाब से इस गीत को बनाया गया। फिल्मों में गीत सिर्फ मोहब्बत के नहीं होते थे, हर एक सिचुएशन पर गीत बनते थे, और शायद यही कारण था कि पुराने ज़माने की जो फिल्में हुआ करती थी वो बिल्कुल सधी हुई होती थी, क्योंकि उसमें हर एक चीज़, हर बारीकियों के ऊपर ध्यान दिया जाता था। और जब गीतों की बात चलती है तो चाहे वो किसी भी सिचुएशन पर क्यों ना हो, उस सिचुएशन पर गीत बनते थे, बनाए जाते थे, और उसे बखूबी इतना खूबसूरत तरीके से निभाया जाता था कि वो गीत खूबसूरत हो जाते थे। और आज भी हम उस गीत को याद करते हैं।

और गोल्डन एरा फिल्म की बात हो रही है मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। गोल्डन एरा गीत सुनहरे आप सुन रहे हैं और आकाशवाणी एयर लाइव न्यूज़ पर आप रोज़ाना सुनते हैं 1:10 से इस कार्यक्रम को। फिल्म संगीत पर आधारित है ये कार्यक्रम और उस ज़माने की बात चल रही है जिस ज़माने में फिल्म बनाना क्या, एक सीन बनाने में बहुत मेहनत लगती थी, पुल पर काम होता था, शूट भी बड़ी मुश्किल से होती थी, हर एक काम में कड़ी मेहनत छिपी थी और वही मेहनत रंग लाकर तब बने हैं वो एरा गोल्डन एरा और उनके गीत बने सुनहरे। जी हाँ, उन्हीं गीतों के बारे में बात कर रहे हैं और वो गीत जब किशोर और आशा दो आवाज़ें ऐसे जुड़ गए

कि गीत को हिट करने से कोई नहीं रोक सकता था, तो फिर क्या बात है। और जब वो लाइंस, वो शब्द जो उसे और खूबसूरत बना दे, वो शब्द सुनने के बाद इस गीत को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता था। जी हाँ, पेइंग गेस्ट का ये गाना हर किसी की ज़ुबान पर आज भी तरोताज़ा है।

0: ताना।
1: वो निगाहें मस्ताना, गीत बहुत खूबसूरत से थे। और अगर बात हो कि तुमने इतना खूबसूरत क्यों कपड़े डाले, इतने सुंदर क्यों लग रही हो, क्यों ऐसे सजी हो, क्यों हम इस लाइन को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम क्यों नहीं बना पा रहे इसे और खूबसूरत, क्योंकि हम नहीं बना सकते। वो गोल्डन लोग ही थे जिन्होंने इन गीतों को इस कदर से, इतने खूबसूरत शब्दों से पिरोया है कि हमें अच्छा तो लग रहा ही है। और जब हम ये सोचते हैं ना कि मोहब्बत की गीतें जो जो गीतों में जो कला है, जो लिखने का तरीका है,

तो ये सोच सकते हैं कि ये करते करते और सुनते सुनते इंसान आराम से ढाल सकता है, शायद कम मेहनत करनी पड़े। मेहनत तो है लेकिन कम करनी पड़े। लेकिन अगर ये बात अगर आती है कि इसमें कुछ अलग मूड के गीत, कुछ अलग सिचुएशन के गीत बनाने हैं, तो उस सिचुएशन में बहुत यदा का

फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप गोल्डन एरा गीत सुनहरे आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। और बात जब हो रही है और सारे सिंगर को हम सुन रहे हैं तो फिर हेमंत कुमार को क्यों पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो वो शख्स हैं जो गीतों को लिखना, गाना, उसे सुर देना, फिल्मों को डायरेक्ट करना और कई सारी चीज़ों में इनकी पकड़ थी। कैसे कोई व्यक्ति इतना महान और विद्वान हो सकता है। और इनके गाए हुए गीत, हर एक गीत बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे। आइए सुनते हैं और इनके

वाकई में जादू है आवाज़ में। यूं ही नहीं खूबसूरत बनता है कोई भी चीज़। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग मिलकर जब काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो एक खूबसूरत चीज़ सामने उभर कर आती है। पुरानी फिल्में, पुराने गीत शायद इसीलिए इतने खूबसूरत हुआ करते थे। हर चीज़ में कड़ी मेहनत छिपी होती थी। सभी कुछ कहते हैं कि उस ज़माने में लोग इतने मेहनती थे कि हर किसी के अंदर एक कलाकार छिपा होता था और वो अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते थे। तभी शायद वो एरा ऐसा था कि हर कोई वहाँ हिट नहीं हो पाता था, आगे नहीं निकल पाता था। जो जितना मेहनत करे वही आगे बढ़ पाता था और उनकी मेहनत रंग लाई। आज हम बात कर रहे हैं गोल्डन एरा के बारे में। जी हाँ, उसी एरा का जिसका गीत आज भी तरोताज़ा है, सुनहरा है। आइए सुनते हैं गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज़ में ये गीत।

आपने ये गौर किया है, जब पुराने ज़माने के गीतों की बात चलती है, उन गीतों के ड्यूरेशंस बहुत कम हुआ करते थे, यानी कि कम समय का गीत बनता था पहले। बहुत कम ही ऐसे गीत हैं जिसके ड्यूरेशन, यानी कि जिसका समय जो है वो लंबा हो, बहुत बड़ा हो, ऐसा बहुत कम गीत है। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो छोटे थे इसलिए आसानी से बन जाते होंगे, या फिर बड़े हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या छोटे हैं तो। लेकिन बात असल में ये है कि उस छोटे से गीत, उस छोटे से समय में बहुत कुछ सिमट कर एक गीत में ही आ जाता था, और सारे बोल जो कहना है उस सिचुएशन पे, वो सब उस छोटे से गीत में इस कदर शब्दों के साथ कह दिया जाता था कि कहीं से भी ऐसा नज़र नहीं लगता था कि गीत कम तो नहीं रह गया, या सिचुएशन पर बेस्ड ये गीत सिचुएशन को अच्छे से बता नहीं पाया, ऐसा कहीं नहीं लगा। गीतों को ढालने का शायद ये बहुत अलग सा तरीका उस ज़माने का था, जिसको हम कहते हैं गोल्डन एरा।

बहुत खूबसूरत सा गीत था। तलत महमूद की आवाज़ में आपने इस गीत को सुना। फिल्म छोटे भाई से, छोटे बाबू से आपने इस गीत को सुना। और गीतों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये गोल्डन एरा के गीत हैं और गीतों का समावेश, अलग अलग तरीके के गीत आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ मैं। पूजा भारती, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म भाभी से। और गीतों का सिलसिला जब चल रहा है तो एक गीत इसके बाद मैं आपको ज़रूर सुनवाऊंगी, जो गीत मुझे अत्यधिक प्रिय है। बहुत प्यारा सा गीत है वो, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत। ये भी कम खूबसूरत नहीं है।

ना खूबसूरत गीत था ये, छुपा कर मेरी आंखों से। वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूँ उनका जो दिल में रहते हैं हर दम। क्या लाइन क्या गीत, वाकई में इस गीत के क्या कहने। ऐसे एक और गीत है और उस गीत में भी कुछ इसी तरीके से मोहब्बत का इजहार किया गया। हालांकि मैंने अपने जो गीत सिलेक्ट किए वो 50s के गीत सिलेक्ट किए हैं, गोल्डन एरा का वो पीरियड, उस समय, और वो समय लगभग 70s तक इतना ही खूबसूरत रहा। गीतों के में जो बदलाव आने शुरू हुए वो 60s के बाद आए, लेकिन 70s में बिल्कुल अलग आया और थोड़ा सा म्यूज़िक पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। लेकिन अगर बात करें गोल्डन एरा उस ज़माने की, जब फिल्म बनती थी, लेकिन वही उसी मुश्किल से, उसी दिक्कत से, तब की बात अगर करें, तब के जितने सारे गीत हैं वो एक से बढ़कर एक थे। और जब गीतों का ये सिलसिला चलता है तब हम ये सोचते हैं कि जब गोल्डन एरा की बात हो तो ऐसे गीत आप कहाँ सुन सकते हैं, आप कहाँ सुन पाते हैं। आप अत्यधिक म्यूज़िक वाले, अत्यधिक संगीत वाले गीत सुनते हैं, या फिर वो बोल आप नहीं पा सकते जो बोल अभी आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम का एक अलग ही उद्देश्य है,

कि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिसे आपने ज़माने से इन कानों से नहीं सुना, उसे आप तक पहुंचाने का मकसद इस कार्यक्रम का है, गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम के साथ आप लोग कई सारे ऐसे गीत जिसे सुने हुए आपको ज़माना गुजर गया उन्हें सुन पाते हैं, तो गीतों का सिलसिला क्यों रोकें, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं।

और गोल्डन एरा का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन मन यही कह रहा है कि क्यों ना एक छोटी सी लाइन आप तक और पहुंचा दी जाए। कल लेकिन फिर से सामना होगा गोल्डन एरा में, जी हाँ, फिल्म संगीत में। अब ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 2 बजने को है, अब हिंदी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
4: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप हैं और मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकतानगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने कल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पहली राष्ट्रीय ऑनलाइन बैठक की। इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार बैठक में नल जल मित्र कार्यक्रम शुरू करने पर चर्चा हुई। इसके तहत गांव स्तर पर तकनीशियनों को जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये जानकारी दी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया।

यार लाइव न्यूज़ 24x7 से आप जुड़े हैं। 2:10 और 10 सेकेंड हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत बहार। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। आइए श्रोताओं, सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत बहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी EIR लाइव न्यूज 24x7। 3 बजने को है। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा।

0: नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकतानगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉ. सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया। अमरीकी वाणिज्य विभाग ने भारत से आयात होने वाले वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप की जांच में प्रारंभिक फैसले की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले फैसला 8 अक्टूबर तक आना था, जिसे अब बढ़ाकर 14 दिसंबर तक कर दिया गया है। इस जांच में तुर्की से होने वाला आयात भी शामिल है। अमरीका ये पता लगा रहा है कि क्या भारत और तुर्की के उत्पादकों को उनकी सरकारों से सब्सिडी या वित्तीय मदद मिली है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashami.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं गीत और गजल का कार्यक्रम।

घर से हम निकले थे मस्जिद की तरफ जाने को।

सीना से के छुरी चलती है, जीवा करनी

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजल और गीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनुरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म का कार्यक्रम, और इसमें अभी आप सुनेंगे चरण्या लक्ष्मी कुमारन की प्रस्तुति।

Let's go.

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम में अभी आपने चरण्य लक्ष्मी कुमारन की ये प्रस्तुति सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 और 48 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन के बारे में। 5:20 का वक्त होगा देशभक्ति गीत का, जबकि 5:30 पर आप आज सुनेंगे स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत सरिता पाठक यजुर्वेदी द्वारा गाया राग अल्हैया बिलावल।

सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जबकि अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 6:05।

6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक दौरे पर है। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन में आने वाली पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए कार्य योजना पर विमर्श होगा। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जोन के नए परिसरों की आधारशिला भी रखेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्य

0: प्रमुखों के साथ अन्य संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमेरिका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand free trade agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
4: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, with the next round of talks set to commence on 5th of

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं।

धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी सांस लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास। और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा। जब श्वास छोड़ते हैं, धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा। और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी कि प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास।